मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की, तिथि 12वीं, तदनुसार 3 जुलाई 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sane Takayuchi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan annual summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the Resistance Front TRF. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th of November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of India-Japan

ये भक्ति संगीत आप सुन रहे थे अशोक सनहोत्रा की आवाज़ में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। भोजन ही दवा है, चैतन्य गुरु जी से।
1: खाने के बारे में थोड़ा चर्चा करें। हकीकत में हम खाना इसीलिए खाना है, जीने के लिए। लेकिन आज हमारा व्यवहार, हमारा जिंदगी लाइफस्टाइल, जो खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए लेकिन उसका हम उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि खाना को दवा में कैसा बदले। पहला, जो एक्सेस कैलोरीज है, जो हमारा जो खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, ये ग्लूकोज में बदलते हैं और विटामिंस मिनरल्स के साथ में ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन से टकराता है तब एनर्जी में बदलता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का खाना, वसा का खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर में जो कंजम्पशन है कैलोरीज

0: के उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो मोटापे में बदलता है। तो नंबर वन, कौन सा चीज़ में कितना कैलोरीज है और उतना ही जितना एक दिन में मेरा कैलोरीज का कंजम्पशन कितना है वो देख करके हमको करना चाहिए। अब बात रहा विटामिंस की, मिनरल्स की, एंजाइम्स की। ये विटामिंस, मिनरल्स, एंजाइम्स जब हम सब्जी को पकाते हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं। मिनरल्स भरपूर हमको सब्जियों से मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर का छिलका उतार देते हैं और जो अंदर का चीज़ों को हम तलते हैं या नहीं तो पानी में डाल के, कढ़ाई में डाल के उबालते हैं। जब ऐसा उबालते हैं तो विटामिंस, मिनरल्स सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कच्चा सब्जियाँ और कुछ सब्जियाँ जैसा यहाँ पर मशहूर है जो वंगा बोलते हैं, ऐसा चीज़ें छिलके समेत खाना बहुत ही आवश्यक है। और इनके साथ में अंकुरित खाएं सुबह नाश्ते में। इस तरह कुछ वेजिटेबल सलाद और फ्रूट सलाद, सुबह कोई भी पका हुआ खाना ना खाते हुए 4-5 बादाम रात को भिगा दें और 2 अंजीर रात को भिगा दें। इस तरह एक परिपूर्ण न्यूट्रिशन फूड ब्रेकफास्ट ये हो सकता है। ऐसे ही दोपहर को हम 1 या 2 रोटी खाएं और बाकी जगह पर इस तरह फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाद खाएं। और शाम को चाय के जगह पर अगर हम सुबह मुनक्का भिगा करके और उनको खाएंगे तो खास करके औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। और ऐसे ही रात को भी अगर हम पका हुआ खाना ना लेते हुए अगर हम कच्चा खाना, अगर जिसको हम अमृतार कहते हैं, अगर इस तरह अगर हम खाएंगे तो हमारा खास करके रात को पत्तेदार सब्जियां हैं जैसा पालक है, बथुआ है, मेथी है, ऐसा चीज़ों को खाएंगे क्योंकि उसके अंदर में भरपूर फाइबर कंटेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन जैसा दूर हो जाता है। और ख़ास करके उनके अंदर में जो हरा भरा चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस तरह सुबह, दोपहर, शाम ऐसा 3-4 बार अगर हम बिना पका हुआ एक अच्छा सब्जियां और फल, कुछ फल छिलके समेत, कुछ फल छिलके उतार कर, जैसा सेब जैसा, अमरूद जैसा चीज़ों को हम छिलके समेत खाने, पपीता जैसा, केला जैसा उनको उतार कर। केला को हम सुबह और दोपहर को खाना चाहिए, रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह अगर हम अपना खाने के प्रति ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शरीर के अंदर में तत्वों को बदलता है, तासीर बदलता है, बहुत कुछ हमारा शरीर के अंदर में फायदा हो सकता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, भोजन ही दवा है पर, चैतन्य गुरुजी से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे आज के कार्यक्रमों की जानकारी से पहले एक छोटा सा अंतराल।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते, जानकारी का

रहेगा पशुओं के लिए ओजोला आहार। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 293। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सामाजिक कुरीतियां, मोबाइल वरदान के साथ अभिशाप, नैतिक शिक्षा का महत्व। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। कलाकार होंगे कालू राम प्रजापत। फिल्म संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ युगल गीत सुबह 9:30 पर। थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा सुनेंगे आप सुबह 10:00। आपकी फरमाइश पर आधारित गीतों का कार्यक्रम गीतमाला आप सुनेंगे दिन के 11:00। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। दिन के 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा पानी व मिट्टी जांच के फायदे। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, वनों के संरक्षण में हमारा योगदान, उस्ताद योजना और हल्दी से मिलते हैं शरीर को ढेरों फायदे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी शीला कुमारी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन के 2:30 पर। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे गार्गी पुरस्कार योजना, जीवन में संगीत का महत्व, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, बढ़ता प्रदूषण बढ़ता संकट और आज का इतिहास। सिराइकी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीता रो गजरो। इसके अलावा बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के

0: रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत्

0: देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानाञ्च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एण्ड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एण्ड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन

0: आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, the Economic Security Partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar initiative provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. Election Commission of India ECI has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress AITC regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the Commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritubrata Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to

0: The first batch of pilgrims reached the twin base camps at Nunwan in Anantnag district and Balthal in Gandharbal district yesterday under tight security. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnan and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of the late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. In Ukraine, 27 people have been killed and 90 others were injured in a massive drone and missile strikes by Russia on the capital Kyiv. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. In Syria, an explosive device detonated in a Damascus cafe yesterday, killing at least 9 people. Interior Ministry reported the device was planted inside the cafe, located 100 meters from the Palace of Justice in the capital's Hijaz district. In the FIFA World Cup, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. Mikel Oyarzabal scored twice in the 36th and 89th minute, while Pedro Porro added the second goal in the 66th minute. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in the round of 32 match in Toronto, Canada. In the ICC Women's T20 World Cup, host England defeated South Africa by 40 runs in the second semi-final at the Cannington Oval in London to set up a title clash with Australia. Put into bat first, England posted 169 for 5 in the 20 overs, riding on net Shivar Brand 75 runs off 47 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय है पशुओं के लिए ओजोला आहार।
2: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, खेती बाड़ी गए सागे सागे किसान भाइयों जगह खेती से जुड़ेड़ा और भी काम धंधा जगह करे जगह चूंकि एक तो अपने खेती से जुड़ेड़ा हुआ है और दूसरा के अपनी किसानों की अर्थव्यवस्था जकी थोड़ी सुदृढ़ हो जाए इन खातर इन जुड़ेड़ा काम धाम भाई लोग जका करता रहे। पर भावें जे आप वैज्ञानिक ढंग अपनावा या नया तौर तरीका अपनावा तो भी व्यवसाय में भी आप अच्छो लाभ है जको ले सका। अब आप व्यवसाय की बात करा तो किसान भाई जका खेती पाती से जुड़ेड़ो पशु पालन को काम धाम है जको करे और पशु पालन को काम धाम इश्यू है कि जो हर परिवार है जो थोड़े या बड़े पैमाने पर करे। पर इमें विशेष तौर कई भाई लोग तो इसे जगह के पशुपालन को व्यवसाय है जो को भी रोजगार है भांगे। पर इमें आप सुनियोजित ढंग से या पशुपालन को काम धाम है जो को अच्छी तौर तरीके से करा तो वो भी अपने ये कैसे किसान की अर्थव्यवस्था में बड़ो ठोस आधार है जो को प्रदान करे। ये पशुओं ने आप रखा तो मन वर्ष भर ताई फसल का अवशेष है तूड़ी है नीरो है इन पर अपने पालना पड़े। पर इंगे सागे सागे हरियो चारो भी अपने टेम सर दियो छठ बारह महीना हरियो चारो लगातार मिले कोनी जैके शू पशुओं में बढ़ोतरी जकी कम हो जाए दूध उत्पादन में कमी आ जाए और इंगे सागे सागे प्रजनन क्षमता पर भी इंगो विपरीत प्रभाव पड़े। इन समस्या शू निजात पाउन खातर अपने वैज्ञानिक

0: या पशुओं खातर अजोला पशु आहार है जो विकसित करो है, तो वो आहार के तरीके से आप इन्हें उत्पादन कर सका और किया वो पशुओं ने खिलाया जाए। अजोला दुधारू पशुओं खातर उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक आहार है। अजोला जल स्तर पर मुक्त रूप से तैरने वाली तेजी से बढ़ने वाली जलीय फर्न है। अजोला छोटे छोटे समूह में सघन हरित गुच्छे की तरह तैरती रहे। वो उत्तम गुणवत्ता युक्त वाला प्रोटीन को अच्छा स्रोत है। पशुओं खातर प्रोटीन को मुख्य स्रोत है। अजोला की पिनाटा जाती है जिकी पाई जाए। अजोला सामान्य अवस्था में वो फर्न 3 दिन में दुगुनी हो जाए। पशुओं खातर आदर्श आहार है। किसान भाइयों, अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में बातचीत करा। छायादार जिग्या पर अपने 20x3x1 फुट यानी के 20 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी आकार की अपने क्यारी जकी बना लेनी चाहिए। इन क्यारी में प्लास्टिक सीट अच्छी तरह बिछा गए और ऊपर के किनारा पर मिट्टी चूमिने दबा गए और मजबूत कर देनी चाहिए। इन क्यारी में 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परतें जकी भी अपने बिछा देनी चाहिए। 5 से 7 किलोग्राम गोबर जो को 2-3 दिन पुराना होना चाहिए। 10 से 15 लीटर पानी में घोल बना के मिट्टी में अपने फैला देना चाहिए। क्यारी में 7 से 8 इंच तक पानी भरना चाहिए। जैके शू क्यारी में पानी की गहराई है जैकि लगभग आधे फुट तक हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी और गोबर की खाद ने जल में अच्छी तरह घोल बना के री क्यारी में अपने घाल देना चाहिए। इन घोल में 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने फैला देना चाहिए। इनके बाद में 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़काव कर देना चाहिए जैके शू अजोला आपकी सही स्थिति में आ जाए। अब क्यारी ने नायलोन जाली से ढक देनी चाहिए क्योंकि मैं कीड़ा है, कागला है या चिड़िया जका खावे ने, तो इन्हें नायलोन की जाली से अपन ढक देना चाहिए। 15-20 दिन में अजोला की बढ़वार जकी हो जाएगी और 21वें दिन अपन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त होने लग जाएगा। अभी अजोला ने अच्छी तरह अपन निकाल गए और साफ पानी से धोगे और दुधारी पशुओं ने देना चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने बांटे के माँ खिलाना चाहिए और दुधारू पशुओं ने देना चाहिए जैके शू 15% तय दूध उत्पादन में जैकी बढ़ोतरी हो जाए। किसान भाइयों, पशुओं की शारीरिक वृद्धि में और दूध उत्पादन में वो उत्तम लाभ देवे है। शुरू की अवस्था में अजोला की मात्रा प्रति पशु कम देनी चाहिए, धीरे धीरे इन्हें बढ़ानी चाहिए। अजोला में प्रोटीन, रेशा, इथर सत्व, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ए तो वही है। इंगे सागे सागे अति सूक्ष्म तत्वों की बात करा जहाँ मैग्नीज है, जिंक है, तांबो, लोहा, सोडियम आगे भी पूर्ति हो करे। अब अजोला जो आप क्यारी में गाले इंगे रख रखाव का भी अपना तौर तरीका ध्यान में रखना चाहिए। क्यारी में जल स्तर लगभग आधो फुट तक होना चाहिए। 3 महीना में 1 एकड़ पानी और मिट्टी ने बदलते रहना चाहिए जबकि शू नई क्यारी के रूप में दोबारा संवर्धन हो जाए। अजोला की अच्छी बढ़वार खातर तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सर्दी की ऋतु में तापमान कम हो जाए तो क्यारी ने पुरानी बोरी या टाट या चादर से ढक के रखनी चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने खातर अपने 20 ग्राम सुपरफास्फेट और 50 किलोग्राम गोबर को घोल बना के हर महीने क्यारी में अपने मिला देना चाहिए। इसमें अपने हर रोज 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला जकी प्राप्त हो जाएगी। नई तरह से अजोला आहार देके पशुपालन भाई लोग लाभ है जो को उठा सके। पर अब हूँ चालू, राम राम सा राम राम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीहारा वास्ते। जानकारी का विषय था पशुओं के लिए अजोला आहार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये लोक भजन।

ये लोक भजन आप सुन रहे थे भंवर लाल सोलंकी और साथियों की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 293।

विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया। किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 293, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं नैतिक शिक्षा के महत्व की। नैतिक शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण और समाज के सुस्थिर विकास के लिए आवश्यक है। ये बच्चों और युवाओं में ईमानदारी, सम्मान, सहानुभूति, अनुशासन और उत्तरदायित्व जैसे गुण विकसित करती है। केवल ज्ञान और तकनीकी कौशल पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का अभाव हो तो वह अपने ज्ञान का गलत उपयोग भी कर सकता है। नैतिक शिक्षा समाज में विश्वास और सहयोग स्थापित करती है, भ्रष्टाचार और विवाद कम करती है तथा समुदाय में समानता और न्याय की भावना को मजबूत बनाती है। परिवार, विद्यालय और समाज, ये तीनों मिलकर नैतिक शिक्षा का आधार तय करते हैं। घर में

संस्कार विद्यालय में नैतिक पाठ्यक्रम और सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट व्यवहार। आज के प्रतिस्पर्धी युग में नैतिक शिक्षा युवाओं को सिर्फ सफल नहीं बल्कि संवेदनशील और समृद्ध नागरिक बनाती है, जो देश और दुनिया के सर्वांगीण कल्याण में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, बातें और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुने ये गीत मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल वर्मा मलिक के, और ये गीत हमने लिया है फिल्म शोर से।

दोस्तों, ये बात करते हैं मोबाइल फोन पर। मोबाइल फोन पर अक्सर हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक पक्ष बोलता है ये वरदान है और दूसरा पक्ष कहता है कि ये अभिशाप है। मोबाइल फोन आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत आविष्कार है जिसने मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। ये संचार की दुनिया में क्रांति लाकर हमें क्षण भर में विश्व से जोड़ने की शक्ति देता है, लेकिन इसके अंधाधुंध और अनुचित प्रयोग ने इसे एक गंभीर समस्या भी बना दिया है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ये न केवल एक संपर्क साधन है, बल्कि शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और सूचना का एक शक्तिशाली स्रोत भी है। आइए जानते हैं ये वरदान कैसे है। मोबाइल फोन के सकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम कभी भी, कहीं से भी, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं, शोध सामग्री और पढ़ाई लिखाई से जुड़े ऐप्स उपलब्ध कराता है। समाचार, मौसम, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, टिकट बुकिंग, नेविगेशन और भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में तुरंत मदद बुलाई जा सकती है। इसके साथ साथ मोबाइल फोन के कुछ दुरुपयोग किए जाने वाले काम भी हैं जो चिंताजनक है। आगे हम जानेंगे कि मोबाइल फोन अभिशाप कैसे है, लेकिन उससे पहले सुने ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में। संगीत था राजेश रोशन का, गीत के बोल थे इंदिवर के और फिल्म का नाम था खून भरी मांग। दोस्तों आइए अब जानते हैं मोबाइल फोन अभिशाप कैसे है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मोबाइल से निकलने वाली रेडियो किरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके अधिक इस्तेमाल से आंखों की रोशनी कमज़ोर होना, सिरदर्द, नींद में खलल और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ी है। सोशल मीडिया, गेमिंग और अनावश्यक ब्राउजिंग में घंटों बर्बाद होने से उत्पादकता कम हो रही है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटकर मोबाइल गेम और मनोरंजन की ओर जा रहा है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। लोग एक दूसरे के साथ रूबरू संवाद की बजाय वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं, जिससे पारिवारिक और सामाजिक बंधन कमज़ोर हो रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। साइबर अपराध, धोखाधड़ी, गलत जानकारी फैलाना और युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाना जैसी समस्याएं बढ़ी है। दोस्तों मोबाइल फोन स्वयं में न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अभिशाप। ये एक साधन है जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब हम मोबाइल का उपयोग सीखने, काम करने, संपर्क बनाए रखने और सकारात्मक कार्यों के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान है। जब इसका उपयोग अंधाधुंध, अति और गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये अभिशाप बन जाता है। मोबाइल फोन एक दोधारी तलवार की तरह है। इसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग ही इसे वरदान बनाए रखने की कुंजी है। हमें समय की पाबंदी, उचित उपयोग और सकारात्मक सामग्री तक ही सीमित रहकर मोबाइल के लाभों को अधिकतम और नुकसान को न्यूनतम करना चाहिए। याद रखें, मोबाइल हमारा सेवक है, स्वामी नहीं। इसका प्रयोग हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, न कि हम इसके नियंत्रण में।

धर्म करम इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों को। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल थे मजरू के। दोस्तों, खुशी जीवन के उतार चढ़ाव को समझने और स्वीकार करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। जिन लकड़ी के छोटे टुकड़ों या कंकर पत्थर को हम कचरा समझ बाहर फेंक देते हैं, उन्हीं टुकड़ों से खेलकर अक्सर बच्चे बेहद प्रसन्नता महसूस करते हैं। खुशी को बाहर ढूंढना मानो मृग तृष्णा की तरह जीवन जीना है। ध्यान रहे कि परमात्मा ने हमें अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप वह सब कुछ दिया है जो हमारे लिए जरूरी है, इसलिए जो हासिल है उसी के साथ खुश रहना सीखिए।

दोस्तों, इस गीत के साथ सुप्रभात कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त गुलशन को दें इजाज़त। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है।

दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई

0: तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस

0: जैसे। अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime, and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया जो अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़राए आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को ख़त्म करने और दीगर मुल्कों में

0: टाइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकल व हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुलकाहिल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़राए आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत और जापान ने दोतरफा खुसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आज़ादाना और खुला भारत बहरुलकाहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इक्तसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क पांच अहम शोबों में दोतरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर, अहम मादनियात, इन्फॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ नामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराखची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पाबित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहजीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है, जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और इकतसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए 2 रोजा तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद नए मुंतखब अरकान को कमेटी निज़ाम, माली निगरानी, पार्लिमानी मुराद और कानून साजी में उभरते हुए डिजिटल पहलुओं समेत पार्लिमानी और कानून साजी के कामकाज के मुख्तलिफ उमूर से रोशनास कराना है।

0: पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में पंचायती राज के रियासती वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी ताकि 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस वर्कशॉप की सदारत पंचायती राज महकमे के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे, जबकि इसमें रियासती वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है, जो 57 दिन तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के इस सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3,888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह खवातीन और बच्चों समेत 4,800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के बीच आज सुबह हजारों की तादाद में यात्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार की तरफ रवाना हो गए। 57 रोजा इस यात्रा के दौरान लाखों यात्री नुनवन पहलगाम और बालतल के रास्तों से सफर करके बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आरामगाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियात जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरियासना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज सपहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: यूक्रेन की राजधानी कीफ पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीफ में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसान की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदहन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई। 13 दीगर जख्मी राहिबों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मस्कूरा लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जनूब मगरबी मानसून दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है। ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बकिया हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जानिब भी बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में मतला अबरारूद रहने के इम्कान के साथ साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एनसी ब्रंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यह मैच कैलिफोर्निया के इंगलवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेद्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से

0: अल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबारात ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जाँच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज़। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ भजन कार्यक्रम सुगम संगीत में।

इस भजन के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। श्री शर्मा रिफाइनरी का निरीक्षण कर HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे और ब्यौरा हमारे बालोतरा संवाददाता से।
1: पीएम के दौरे के दौरान करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पासधारी लोगों को ही रिफाइनरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पचपदरा से रिफाइनरी तक साइकिल से विशेष लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने 500 से अधिक साइकिलों की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी वाहन को रिफाइनरी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी आज पचपदरा आ रहे हैं। वे पीएम विजिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं रिफाइनरी के पास SPCL के नवीन आउटलेट का शुभारंभ भी करेंगे। बंसीलाल, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। विभिन्न प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

0: करेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमत में 6.23% की बढ़ोतरी हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा है कि जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कल जयपुर में सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री दक ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और अपने अनुभव अन्य किसानों के साथ साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों और कॉन्फेड के बिक्री केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ईबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्वघोषणा प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने झूठी शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने और निर्दोष लोगों को फंसाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए जून महीने में 75 लोगों को अदालत से सजा दिलवाई है। वहीं 1870 मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने बताया कि झूठी शिकायतों के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत में ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस अवधि में नागौर जिले में सबसे ज्यादा 292 मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जबकि जयपुर ग्रामीण और अलवर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए की गई सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में सवाईमाधोपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि अप्रैल और मई 2026 के दौरान जिले की 1584 नवजात बालिकाओं के खातों में 39,60,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले ने योजना के तहत 98% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।
1: हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी होती है, प्राइवेट जो हमसे जुड़े हुए हैं SGSY एक्विटी गंगापुर सिटी में, उनमें जो डिलीवरी होती है उसका हम पर डे एनालिसिस करते हैं, कितनी डिलीवरी हुई है, उसमें से कितनी बच्चियां पैदा हुई, कितनों का भुगतान हो गया, कितना नहीं हुआ है। वो डेटा हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल का 5, 7, 10, 20 से ज्यादा का नहीं होता। मेजर जो गैप है हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी इंदिरा है, भंडार है, जहाँ हमारी ज्यादा डिलीवरी होती है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ से निकल गया। फिर हम उसका सब सेंटर वाइज बाइफरकेशन करते हैं, किस सब सेंटर की ये डिलीवरी है, दस्तावेजों के अभाव की वजह से किसी का भुगतान रुकता है तो वो दस्तावेज हम उपलब्ध कराते हैं।
0: प्रदेश के अधिकांश दक्षिण पूर्वी इलाके मॉनसून की बारिश से भीगे हैं। कल मॉनसून के प्रवेश के साथ ही चौमासे की बेहतर शुरुआत हुई। कई स्थानों पर झमाझम मेह बरसा। राजधानी जयपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी है। डूंगरपुर में सुबह से ही बरसात हो रही है। भीलवाड़ा

0: के मांडलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर और गुलापुरा क्षेत्र में झमाझम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज बारां, कोटा और झालावाड़ के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट बताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है।
1: आगामी तीन चार दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल भावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं कालूराम प्रजापत।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार थे कालूराम प्रजापत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आंधी से। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल थे गुलजार के।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अभिलाषा से। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल मजरू के।

आप आए बाहर आई, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों को। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अभिमान से। संगीत था एस डी बर्मन का, गीत के बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, फिल्म का नाम था मेरे हमसफ़र।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गा मेरे मन गा। ये कार्यक्रम है थीम पर आधारित, और आज की थीम दर्द, मोहब्बत में तड़प। दोस्तों, प्यार की असली खूबसूरती उस बेचैनी, उस तड़प में है जो दो दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें तड़प हो, एक दूसरे से बात करने की बेचैनी हो। अगर वो तड़प ही खत्म हो जाए तो फिर मांगा हुआ समय और ज़बरदस्ती की कदर दिल को सुकून देने के बजाय दर्द देने लग जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ से। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात। संगीत आनंद मिलिंद का है, गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

0: दोस्तों, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाएंगे गीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल। अभी आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: ₹10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, तड़प सिर्फ दर्द नहीं है, तड़प दिल का वो एहसास है जो ये बताती है कि कोई आपके लिए कितना खास है। जब कोई याद आए और आप उसे पाने को तरसें, जब कोई मिले और लगे कि पल रुक गया है, ये सब तड़प के ही रूप हैं। कहते हैं प्यार हमेशा एहसास से जिंदा रहता है, ना कि हिसाब किताब से। तुम्हें मेरी याद आए और मैं तुम्हारी तलाश करूं।

एक शख्स था जिसने मोहब्बत की थी बेपनाह, पर जिससे की थी उसे खबर ही नहीं थी। वो रोज उसकी राह देखता, उसकी एक झलक के लिए तरसता, पर सामने वाला बस मुस्कुरा कर निकल जाता। धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद कम होने लगी और दिल में सवाल ज्यादा, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि उसे महसूस भी नहीं हुई, या फिर क्या मोहब्बत का असली इम्तिहान वो तड़प ही है। एक दिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे वो मिले या ना मिले, वो अपनी मोहब्बत की इज्जत खुद करेगा, क्योंकि तड़प मोहब्बत का अंत नहीं बल्कि उसकी गहराई का सबूत है।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और पंकज उदास की आवाज़ में। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के। फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम। इस कदर बेबस हो गया है मन अंदर से, चीखने की आवाज़ें आती है खंडर से। एक बार जो डूब गया तो पार हो जाऊंगा, मुझे अब खौफ नहीं आता है समंदर से।

ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम था बेवफा सनम। संगीत निखिल विनय का था, गीत के बोल थे योगेश के। दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों, मोहब्बत में तड़प सिर्फ फिल्मी अंदाज नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। जब हम किसी से गहरा लगाव महसूस करते हैं तो दिमाग में कुछ रसायन ऐसे सक्रिय होते हैं जो दर्द और खुशी दोनों को एक साथ महसूस कराते हैं। तड़प तब होती है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हमारा प्यार एक तरफा होता है, या फिर हमें लगता है कि हमने किसी अपने को खो दिया। पर याद रखिए, तड़प इश्क का अंत नहीं बल्कि उसकी गहराई का पैमाना है। और हर तड़प के बाद या तो मिलन होता है या फिर खुद से मिलने का सफर शुरू होता है।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म सैनिक से। अधपके ख्वाबों का सौदा अब और नहीं, जिंदगी तुझसे समझौता अब और नहीं। कितने दिल टूटे और कितने ही बर्बाद हुए, इश्क तेरे नाम पर भरोसा अब और नहीं। बस एक जान बाकी है और तो कुछ नहीं, ले जा कि जीने की तमन्ना अब और नहीं।

एक बार गौर से देखना तुम मेरा मुस्कुराना। दर्द छुपाने की एक कला है मेरा मुस्कुराना। तकलीफ में होता हूं तो कुछ कह नहीं पाता। देखने जैसा होता है तब मेरा मुस्कुराना।

इस गीत के साथ अपने दोस्त गुलशन को दें इजाज़त। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूँगा, मेरे दिल पर लगे घाव देखना, फिर तुम अपना बर्ताव देखना। हर कोई छोड़कर जा चुका है, मगर तुम मेरा ठहराव देखना। नमस्कार।

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल

अभी आप सुन रहे थे गा मेरे मन गा, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। 11 बजे हैं, आप श्रोता सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतमाला।

गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, राकेश नाथ की तरफ से। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। उनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली संवाद और शाही अंदाज से उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। आज उनकी बरसी पर उन्हें याद करते हैं, नमन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी थी। ये है हमारे श्रोता जो व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजे हैं। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। दंतरेंगी भाटावारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पार्शमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा। गांव खोकरा वाली अनूपगढ़ से विनोद बाराशाह, विशाल, विकास, रोशनी बाराशाह और शगुन बाराशाह। कन्वीर हाउस भुच्चो केंचिया बठिंडा पंजाब से परमवीर सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, कन्वीर, दीपेंद्र, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। ये हमारे श्रोता है गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिट्टा और अलका मिट्टा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस न्यावकर, निर्मला और विशाल न्यावकर। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, शीतल राजेश। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमुन सिंह जोशन, आदर्शपाल जोशन मेलबोर्न से, रोबन सिंह जोशन वैंकूवर से। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। ये हमारे श्रोता है अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश थाकड़, नायमा, रंजुबाई थाकड़, युवराज सिंह थाकड़ और शिवांगी थाकड़। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। ये है बोरखेड़ा

पितरामल से विनोद मोणत, नेहा जैन दीपक मयंक मोणत, चेतन नाहटा दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मोणत। सिद्धार्थनगर दयारपुर बावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और आलोक अशोक येले। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये हमारे श्रोता है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। ये है बिरमगाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसर, भावेश शनि भावसर। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक गोहर और तन्वी गोहर। और ये है जयपाल यादव। मोताला महाराष्ट्र से विजय सोलकर, रतनमाला, आरती गोरी और ओम कुमार सोलकर। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अगले गीत को सुनने के लिए हमारे पास संदेश आए हैं। चकदस एस डीपी लालगढ़ जाटान से रामेश्वर निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मनीषा, हेमू और ब्रजलाल निरानिया, ये हमारे श्रोता है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, गांव हिपरसोगा, तहसील ओशा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर राजकुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया और गुड्डू, ये है हमारे श्रोता श्यामलाल राजपाल, संदीप कुमार, जयपाल चिमललाल, मंडी केसरी सिंह पुर से। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अबासी, निखत परवीन अबासी, शाहनवाज अबासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्ध कड़वासरा, कृष्ण मायल, हनुमान सहारन, किरुराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, ये है कवाई सालपुरा, जिला बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अशोक श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव, ये है हमारे श्रोता।

मानसी गौरव, कविता अनिल अरोड़ा। ये है मोती नगर न्यू दिल्ली से। चक 15 PS-B से कुलदीप सिंह, राजविंद्र गौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज बिरक। ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक, जिला चूरू, राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, शोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान। ये है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, सुनील सुथार, मोहन सुथार, भजनलाल। ये है हमारे श्रोता दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म फांसी का ये गीत।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर कुलविंदर कौर मान, हरजिंदर मान, राज सिंह और प्रीत मान, ये लिखते हैं अमरगढ़ शादुल शहर से। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल, ये है कुलविंदर सिंह, खुशप्रीत, जसदीप, गाउन 4M से। लखवाली हेड से मास्टर भवन लाल, कृष्ण, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुखना राम और इनके साथी, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, ये है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति, गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रेमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, शैना, विष्णु ढूकिया और ये है इवाधारणिया। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, ये है गांव रायन से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, यशवंत, पूनम चालिया, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष सहारन, ये है तहसील भादरा अनुपशहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, शाहिल, राघव, उपेश कुमार, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, किनू, मदनलाल शर्मा, फुसाराम मील, पंकज कुमार, हर्ष, मनीष, राजेश कुमार, श्री कर्णपुर से पवन कटारिया, शैलो कटारिया, समीर कटारिया, ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जेवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, शहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयसरी मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबुल और पीबी कुलथे, ये संदेश आया है हमारे पास नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये नगमा जिसे लिया है फिल्म सुहाग से। आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह ने।

श्रोताओं ने अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी, यह राजकोट से जेमिन कुमार जैन, हैतुल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन, गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत, बेबी गरिमा बगड़िया। ये है आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, गांव बनवाला हनुमंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यसिका विद्या देवी और इनका पूरा परिवार, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, गांव कुम्हार खेड़ा सहनपुर से सैयद मशरूर, शैना हसन, अक्षा नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम और अदीप। यह है शादुल शहर से राम कुमार रेवाड और चंद्रकला रेवाड, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से रेणु शर्मा, रुद्र शर्मा, वंदना शर्मा और विशेष शर्मा। ये है हमारे श्रोता अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, सदर बाजार कुरावली से, गांव हीरावाली फाजिलका से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम क्रोडीवाल। और ये है हमारे श्रोता गांव राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा। मंडी केसरी सिंहपुर से बिलू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष सूद और विश्वजीत। मंडी डवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी। हनुमानगढ़ टाउन से ये है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान, जिसान। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी और भारती नाचानी। ये है रामगढ़ केंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहेब। गांव ठाणी लाल खां से ये है जावेद खान, अरमान खां, इरफान खान, सीमा बानो, विनोद खां, जुनेद, शोहिल खान, मुखराम, आरिफ खान, ईयान खान, अरशद, अरमान। ये है मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता गोट। ये हमारे श्रोता है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक। दंदरेगी से भागवत प्रसाद वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी बाबू और डब्बू। गांव जाखोद राजस्थान से संबुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक और कुमारी पूजा खटक।

चक 5 MD पत्रोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल और इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड, कृष्ण मुकेश तरड, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़। ये हमारे श्रोता है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिसा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यस मंसूरी। कंवर कॉलोनी बड़गांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना श्रीमाली, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। ये हमें पत्र के माध्यम से फरमाइश लिख भेजी है। गांव चोलहदा से संजय ठिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। श्रीगंगानगर से गांव दौलतपुरा से ये हमारे श्रोता है शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। चाहत कल्ला पंजाब से ये है अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर और अंबा चहल। मंडी गोलवाला से ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। कनेरा मोहला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलकर, निहारिका और वंश बत्ता। डाबर तालावलोनी से यह है रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। बागा पुराना पंजाब से सतनाम सिंह, रखरा अमरजीत कौर, तेग फतेह सिंह और यह है जसगुन रखरा। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, नीति ग्रोवर, पवनीत और विक्रमजीत। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आशमा फकीर। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। मलोट के पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह भाटी, विमान, लखविन दर्शंधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। ये है अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। ये हमारे श्रोता है डबवाली हरियाणा से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया। मुकतसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत और निशु। हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयेश नायक और शोभा नायक। आदर्श नगर मलोट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा। श्रीगंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। अलीका डवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर कौर, बिरक, जैतिक बिरक और मिक्का बिरक।

शहदुल शहर से ये है ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश। इंदिरा कॉलोनी श्री गंगानगर से नेकी राम बंसीवाल, जेनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल। ये है खुशीराम रिणवाद, जीतनाथ मणिराम, मोहनलाल महला, पालाराम पूर्णिया, श्रवण रिणवा और कानाराम, ग्राम जाजड़िया वाला 18 जीजी से, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जय प्रकाश, राहुल, नूर, नवन, सिमरत और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, ये है फिल्म का नाम। आइए सुनते हैं ये गीत।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। ये लिखते हैं रानी बाजार बीकानेर से, रानी जम्ब और बिट्टू जम्ब। ये हमारे श्रोता है, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का।

ये हमारे पास फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। बिल्ला बजाज, हेफी कपूर फिरोजपुरी, मुनीस बजाज, ये लिखते हैं मक्खू फिरोजपुर से। नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, गणेश चौक रातानाडा जोधपुर राजस्थान से हमें फरमाइश लिखते हैं। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद केफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। शाहनगर से ये है हमारे श्रोता राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अबासी, शाहनवाज अबासी, नवेद हसन अबासी, सुहेल हसन अबासी, ये है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श बेगम, राबिया शेख शेख, रहीम मुना और दानिश आशिफ शेख। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफसल मलिक, निपी साहनी और सुनीता साहनी। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, शाजदा रानी और शीना कौशर, ये लिखते हैं मोहला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से। ये है गांव हीरावाली फाजिलका से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक। ये है अहमदगढ़ से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, शकीना, जस्मीन, रजिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये है हितेंद्र, स्टेट आसाम से लिखते हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। छोटी बलिया तालुका करवत से अहमद भाई फुलवाले, दुखना सदफ, जोही इकबाल, इमरान, अहमद फुलवाले और इनके साथी। जिला मुरादाबाद से ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू मोनू, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, बलवीर सिंह, सज्जन कुमार चांगड़ा, गामनोलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से कार्तिक चांगड़ा, राजवाला कार्तिक, वेदांश। आप सबकी पसंद पर चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। ये है नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर कैलाश मिस्त्री गोवर्धन फरसाराम सोलंकी और इनके साथी, और ये है हमारे श्रोता गांव पीपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योतिष और शिवांश वर्मा, गंज डुंडवारा से मोहम्मद वलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी और इनके साथी, और ये है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन और आशा देवी।

इंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और ये है हमारे श्रोता बुल्डाना वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। सांगली जिला जत शहर से ये है अताफ हजूरे, सेफुल्ला शबाहत किर्त हजूरे और रेहान शेख। इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गीतमाला यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतमाला। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, आप श्रोता सुने कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतमाला। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, आप श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। खेत खलियान में किसान भाई सुनेंगे जानकारी। पानी व मिट्टी जांच के फायदे, इसका समय रहेगा 12:50। घर आंगन में बहनें सुनेंगी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, वनों के संरक्षण में हमें हमारा योगदान कैसे दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 1:05। 2:30 पर श्रोता फिल्म संगीत सुन सकते हैं। 3 बजे हमारी उर्दू सर्विस का प्रसारण होगा। संध्या 5 बजे युवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गार्गी पुरस्कार योजना, जीवन में संगीत का महत्व, बढ़ता प्रदूषण और आज का इतिहास विषय पर जानकारी श्रोता प्राप्त कर सकते हैं। सराइकी का समय सर रहेगा संध्या 6:05। चौपाल का प्रसारण संध्या 7 बजे किया जाएगा। इसमें गीतारो गजरो, बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी किसान भाई सुन सकते हैं। 7:45 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, ये प्रायोजित कार्यक्रम रहेगा। 9:30 पर पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू का प्रसारण किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, FM 100.1 मेगाहर्ट्स। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। आप प्रस्तुत

अभी आपने पूरब और पश्चिम इस फिल्म का ये गीत सुना, ये आप सुनते हैं सावन भादो। इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत सोनिक ओमी का है।

0: कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
1: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
0: मेरा दिल।
1: क्या?
2: आइए सुनते हैं ये गीत, सावन भादो। ये है फिल्म का नाम।

मस्ताने ओ जानी जरा नजरें मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा

0: सी चटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है आंखें।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाह

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनते हैं गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में गुलाम अली की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत।

0: झारखंड से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दोपहर के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है पानी व मिट्टी जांच के फायदे।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में भी अंधे खान तो आपने जो किसान भाई लोग है भी अब सावणी जी की फसल है बीजांत लगभग करी ली, और कई जगह आपने जगह भाई लोग है भी धान की जी की फसल है बाबी बीजन ला रहे हैं, और ग्वार की जी की फसल है बिंगी भी अब जगह भाई लोग है भी बीजांत कर ला रहे हैं। तो अब के है कि अपन है मिट्टी और पानी की जी की जाँच है बाबी करवानी जरूरी है, और वो जो को काम है भी अंधे खानी तो आपने भी जाए छू महीने सवा महीना या 20 दिन पहले अपन करवाना चाहिए, ताकि इनको फायदो वो है कि एक तो अपन मिट्टी की जी जांच करवावा या फिर पानी की जी की जांच करवावा, बिंगो जो को परिणाम है वो अपन है बिजाई के टाइम पर बढ़िया मिल जाए, और अपा बिंग हिसाब से अपनी जी आने वाली जी फसल है चाहे अपा किसी भी किस्म लेके फसल की बीजांत करा तो बा भी जांच के हिसाब से अपा बीजांत कर सका। लेकिन फिर भी अपना जगह भाई लोग है जगह बीजांत कर ला रहा है या फिर जको रकबो खाली है या फिर बीजांत कर दी तो भी अपा की एक मिट्टी की जी की जांच है या फिर पानी की जी की जांच है बापा करवा सका। बी अंत खानी तो अपनी जी की नरमा की जी की फसल है या फिर कपास की जी की फसल है या फिर दूसरी जी की फसल है बंगमा बीजांत कर दी, और बंगी जी की माटी की जांच है बापा अब मौका पर भी करवा सका, और इन अलावा जहाँ खुडगा माऊँ आप माटी चक गए माटी ले गए भी नमूना जक है बांसू भी आप जांच करवा गए, और अपनी माटी की जी की जांच आप करवा ले सियाँ तो बीच अपन पतो ला जा सी का अपनी माटी के माँ कितनी ताकत है किसा जगह पोषक तत्व सूक्ष्म तत्व जक है गुण तत्व जक है भी कम ज़्यादा है तो बिंग हिसाब से आप खाना पूर्ति जी किया कर सका। कई बार आप देखिए ग्राहकों अपनी जी की खड़ी फसल है बिंग माँ अपन कई तरह जगह उतार चढ़ाव देखने मिले है, जहाँ कई बार फसल जी की है वह पीढ़ी पड़ ला जाए, कई बार फसल जी की है वह बढ़वार कम ले या फिर जो उगाव जो है वो बढ़िया हो जाए, लेकिन बिंग माँ की है कि कई जगह कीड़ा कांटा है वे ज़्यादा लागने की संभावना अपन या ध्यान में आन ला जाए कि अब अपनी जो फसल है वह कमज़ोर है और माँ व्याधियाँ जी की है बीमारियाँ जी की है भी लाग सके, तो ये जगह लक्षण है बिया तो शुरुआती दौर पर अगर आप जाँच करवा लें माटी की तो आप बिंग जी की भरपाई अब पहला कर देवा, जब आप फसल बीजांत कर ही दी तो आपने जगह भाई लोग है भी खुडगा माऊँ माटी का जगह नमूना लेके भी आपने माटी की जगह जांच है वह करवा सके। इन अलावा आपने किया है कि माटी जांच का और भी कई फायदे है, जी कई बार आप खाद जगह उर्वरक जगह आप नाखा बे अनाप शनाप नाक देवा और बाद में अपन पतो लगे कि आप जगह उर्वरक नाखे है जगह सूक्ष्म पोषक तत्व तो आप माटी ने दिए है फसलों ने दिए है बाकी फसलों ने जरूरत भी कौन माटी के माँ पहला शु भी मौजूद अपने जगह पोषक तत्व है बे हाँ। तो कई बार आप सुना भी हाँ और देखा भी हाँ कि अपनी माटी के माँ कई बार उथली जडाली जी की फसलों की बीजांत करा तो जगह पोषक तत्व है बे पूरी पूरी मात्रा में अपने जगह पौधा है अपनी जगह फसलें हैं भी ले लिया, कई बार आप गिरी जडाली जी की फसलें बांगी बीजांत करा तो बीच भी किया पोषक तत्वों को जो उतार चढ़ाव है कम ज़्यादा जो कि खाना पूर्ति है वह देखने मिले हैं तो माटी की जाँच जी है वह जरूरी ऐसा कहने की मोटी सी बात आई है कि माटी आप जाँच करवावा, और माटी जाँच का जगह नमूना लेने का तरीका है बिया तो थाने बार बार बताते ही रहा लेकिन हूँ थाने थोड़ा सा चेता और करा दे कि जगह बिगह गमाऊँ या फिर जगह मुरबा गमाऊँ आप माटी की जाँच का नमूना लेना है बट अपन छह सौ पहले तो वो ध्यान में रखना है कि माटी जकी है जट्ठा से अपन नमूनों लेवा भी मुरबा को जो को नंबर है वो अपने ध्यान में होना चाहिए भी बिग्गा को जो को थोड़ा सा अपन बिरबू रखना जरूरी है, और नमूना लेने के लिए अपन के करना है कि फुटवाई फुट को एक तिरछो जो को वी आकार को जो को गड्ढो है वो खोदना है ना, और खोदने के लिए अपन कोई धातु की जकी कोई खुरपी है या फिर फावड़ो जो को है कसी है बाको लेने नहीं, या फिर कई बार देखे करेंगे आप गोबर लागेड़ा कोई खुरपी है या फिर कोई और जो को संजा अपना कन है बिंगमा कोई कचरो ला रही है या फिर कोई माटी ला रही है तो अपन जगह संज शू माटी निकालांगा नमूना वास्ते तो वो एक तरीके से साफ सुथरो होनो चाहिए, और बढ़िया तरीको तो वही है कि आप कोई लकड़ी गए या फिर कोई प्लास्टिक का कोई इसे संज शू निकाला जगह भी जैसे अपने नमूना में कहीं भी तरीके जो फेर बदल है वो अपन देखने ना मिले, वी आकार को अपन गड्ढो खोदनो है फुट बाई फुट को और 2-1.5 फुट आप नीचे से जो को नमूना है वो लेना है ऊपर की जी की माटी है वह अपन हटागे एक बार पासा कर देवा और बीहू बाद गवा माटी जी की साफ है वह नीचे की जी की माटी है वह आप एक साफ कपड़े के ऊपर ढेरी कर लेवा, और बाद गमा की है कि दूसरा नमूनों जो है वो भी दूसरा या चौथा या तीसरे बिगा गमो अपन ले सकता तो इन त्रियाँ से ही अपन लेना है, और भी नमूना लेने के लिए जिकी माटी अपन इकट्ठी करी भी माटी ने अपन के करना है कि चार हिस्सा बिना ढेरी बना के कर लेना है 2 हिस्सा अपन फेंक देना है और बीहू बाद गमा फिर भी जगह 2 हिस्सा बचे बाद 2 हिस्सा ना फिर अपना रड़म पड़म करके मिला लेवा और बाद में फिर

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जोधपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल, हेलीपैड, सभास्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जोधपुर और बालोतरा के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा पशपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण कर HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे।

0: गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जोधपुर और बालोतरा के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा पशपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण कर HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे पचपदरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। युवा मामलों के विभाग की ओर से हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना था। साथ ही उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना रहा। कार्यक्रम में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। प्रदेश में राजस्थान समान नागरिक संहिता UCC 2026 के संबंध में संभाग स्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। इस दौरान आम नागरिकों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में प्रारूप समिति के सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर संभाग की जनसुनवाई की। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। बैठक में प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आमजन से भी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई। इधर जयपुर कलेक्ट्रेट में 10 और 11 जुलाई को जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई होगी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर पानी जयपुर के सांभर में बरसा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चली। विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के छाने की संभावना जताई है। जैसलमेर को छोड़कर समूचे प्रदेश के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 607 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का इस साल 6 दिसंबर को होगी और मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले साल 1 और 2 मई को प्रस्तावित है। इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

लो सा, दोपहर 1:05 ऊपर हो गया है। थारो मारो आपनो प्यारो रेडियो स्टेशन माथे, थारे मोबाइल और रेडियो सेट माथे गुंजन लाग गयो है आपनो ओ प्यारो कार्यक्रम घर आंगन। खम्मा गणी राम राम जय श्री कृष्णा। मैं हूँ थारा सागा थारी आपरी जीजी सिल्लू जीजी। कार्यक्रम शुरू करा पण मैं बहनों दोपहर रो टेम कितनो चोखो होवे नी, बारे तो असाडरी कड़कती धूप तप रही है, लूरा थपेड़ा चाल रिया है। पण मन पतो है कि मारी सगली बहना घर रो काम धाम खत्म करर, टाबरा ने खवा पियार और चूल्हे चाकेरे काम सु निपटार, कतई आराम सु रेडियो चालू करर बैठ गई होवेला। अरे कहियाँ चाय वाय पीर एकदम फ्री होगी नी लागो, थारी चाय री चुस्की री खुशबू अठे रेडियो स्टेशन तक आवे है सा। अब चाय री थकावट उतर गई होवे तो थोड़ी कामरी और मीठी मीठी बातें भी कर लेवा। आज मारो जी कितो राजी है मैं थाने बता को नहीं सकूं। रेडियो री इन खिड़की सु मैं थारे सगली बहना ने देख पा रही हूँ, थे सब आज कितनी राजी और फूट री लाग रही हो। टाबरा रो काम, पशुआ रो और खेता रो काम थाने फुर्सत कठे मिले है सा, पण आज इन दोपहर में सगलो काम छोड़र थे मने सुनन ने बैठी हो, कितनी चोखी बात है। साची बात तो आ ही है बहनों कि लुगाई बिना घर उजाड़ लागे और थे ही तो घर्री असली रौनक। इन बात पे खुद वास्ते एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दो। बनो आज रो ओ 1 सिर्फ थारो और मारो है, इन हंसते खेलते माहौल में आप जीवन सु जुड़ेड़ी कितनी कामरी बात्या कराला। अब देखो मौसम बदलन लाग रियो है, इन में अपनी सेहत रो ध्यान रखनो सबसे पहला है। इन वास्ते आपा बात कराला अपनी रसोई री रानी यानी हल्दी री, जिकी अपने शरीर ने ढेरों फायदा देवे, शरीर रो दर्द मिटावे और रोगा ने भी दूर भगावे। और जद सेहत चोखी होवेला नी तो आपा घर आंगन के साथे साथे बाहरी दुनिया में भी नाम कमा पावाला। सेहत के सागे सागे आपा बात कराला उस्ताद योजना री, बहनों जिकी अपने गाँव री लुगाया री हाथ री कला और हुनर ने मोटो बाजार देवेली, जिकेसु आपा खुद रे पैरा माथे खड़ी हो सका और खुद रो रुपयो भी कमा सका। हाँ पण बहनों कमाई और तरक्की रे साथे साथे अपने आस पास री प्रकृति ने भी संभालनो पड़सी। आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, तो आपा इन बात माथे भी बात कराला। बाजार जावा जद प्लास्टिक री थैलिया छोड़र कपड़े रो थैलो लेर जावाला और आपा कपड़े रे थैले ने ही अपनावाला। कपड़े रो थैलो हो गयो, जूट रो थैलो हो गयो, आपने धरती माँ और भोली गाय माता ने किया बचावनो है वो भी मैं थाने बताऊंला। धरती माँ जद हरी भरी होवेली नी जदि आपा वना रो संरक्षण कराला, यानी आपने आंगणे बाड़े और खेतारे मायने पेड़ पौधा जरूर लगावना है। तो देखो मारी लाडली बहनों बातारो और सिलसिलो पूरो 1 तक बिना रुके किया चाल तो रहेला थाने ठाई कौन चाल सी। पण पहला इन दोपहरी मायने थोड़ो सो रंग घोल देवा, थारी थकावट ने थोड़ो दूर भगा देवा और माहौल ने थोड़ो सुरीलो बना देवा। तो आओ रेडियो सेटरी आवाज़ थोड़ी बढ़ा लो और सगली मिलर सुनो एक ओ पूठरो सो मारवाड़ी लोकगीत, जिको सुनर थारो जीव एकदम राजी हो जावेला। तो सुनो सा ओ गीत।

वाह सा वाह, कितो मीठो और सुरीलो गीत सुनियो है। मने पता है हमारी बहना रेडियो रे सामी बैठी बैठी गुनगुनान लाग रही होगी। चलो जी राजी हो गयो होवे तो अब आपा चला अपनी रसोई रे माए। मैनू दोपहर रो टाइम है, रोटी पानी खा थे सगली बैठ गई हो, पन कदी विचार करियो के अपनी रसोई रे माए ने एक ऐसी चीज है जिकी दवाई भी है, सुगंध भी और सागे आपने ब्यावरी असली रौनक भी। हाँ बहना, मैं बात करूँ हूँ अपनी रसोई री रानी पीली पीली हल्दी री। अरे हल्दी रो नाम सुनते ही थाने आपने ब्यावरा दिन याद आया कि कोनी आया? जद आपा दुल्हा दुल्हन ने पिठी लगावा तो ब्यावरा कितना पूठरा पूठरा गीत गावा। हाँ हल्दी रा गोटा पीस्या राज लाडा ने हल्दी लाग सी कितने चाव सु गावा सा। पण कदी सोचो है कि ब्याव मायने हल्दी क्यों लगावे? अरे सा अपनी दादी नानी कितनी अंतर्यामी ही, वे जाने है कि हल्दी सु बदर कोई ब्यूटी पार्लर को नहीं हो सके। उन टाइम माथे 12 हजार तैयार होने रो रिवाज इकट्ठे होया करते हो। घर री हल्दी ही चेहरे मायने निखार और चमक लावती, बन्ना बन्नी ने चांद जिसो चमचम कर देवता। आज भी कह वैसा जे चेहरे माथे कील मुहासा या झाइया हो जावे तो बारे री महंगी महंगी क्रीमा ने छोड़ो, हल्दी मायने थोड़ो सो दूध या मलाई मिलार चेहरे पर लेप लगा लो, थारो रूप कंचन वर्गो चमकन लाग जासी और थे सगली घनी पूठरी लागोला। पण हल्दी खाली रूप ही कोनी सुधारा है बहनों, आ तो आपने अंदर सू भी लोहेरी तरह मजबूत बना देवे, आपने स्वस्थ भी रखा है और आपने एलर्जी सू भी बचावे है। इन बारे में और भी बातचीत करा ला, पण पहले सुनावा था ना एक और चोखो सो गीत।

मैडम आजकल ओ बदलतो मौसम है, कदी कड़कती धूप तो कदी बिरखा। इन मौसम रे मायने टाबरा ने और खुद आपा ने भी कई बार खांसी जुखाम हो जावे है। इन सब रो सबसु चोखो और घरेलू उपाय है रात ने सोनता बखत है एक गिलास दूध रे मायने आधी चमची हल्दी घाल और उबाल लो और पी लो। थारी अंदरूनी ताकत इतनी बढ़ जावेली कि कोई भी बीमारी थारे खने फटकने से पहले 100 बार सोचे ली। और हाँ, खेत खाला रे मायने काम करता बकत है या टाबरा रे या बींद रे कदी कोई चोट लाग जावे, खून आवन लाग जावे, तो उन वक्त घबराणो कोनी। बस घर्री रसोई रे माय जार हल्दी रे मायने थोड़ो सो घी मिलार लेप लगा लो। खून बैणो मिंट रे मायने बंद हो जासे और घाव भी ठीक हो जावे लो। इन वास्ते कह वैसा कि हल्दी रो ओ पीलो रंग अपनी सेहत और रूप वास्ते सबसु चोखो है। लो सा, इन बात माथे दो पुठरी सी पंक्तियां सुनो जिकी सीधी थारे कालजे रे मायने उतर जावसी। ब्याह शादी में चमके लाडो, ब्याह शादी में चमके लाडो हल्दी रो रूप सुहावे सा। दूध में मिलार पी लो बहना काया कंचन हो जावे सा। हल्दी री मिठास आड़ो एक मीठो सो लोकगीत सुना जिके से थारो मूड एकदम फ्रेश हो जावे लो। सुनो सा और शानदार सो गीत।

सवा के तो पूट रो और रंगीलो गीत हो। मने पतो है गीत सुनते सुनते मारी कई बहनारी उंगलियां भी रेडियो री आवाज वदावन सारू दौड़ गी होवेला। चलो अब आ जाओ मारी लाडली बहना, आपने उन मोटी बात रे माथे जकेरो वादो मैं गीत सु पहली थाने करियो हो। बहनो आज पूरो संसार माए एक बड़ो ही अनमोल दिन मनायो जा रियो है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। थे कैवला, अरे जीजी ओ के है, और आपा गांव ढावणिया री लुगाया रो इनसु के लेनो देनो है। अरे बहनों सब सु मोटो लेनो देनो तो आपा रो ही है, आपा जद भी बाजार या दुकान माथे जावा तो सब्जी वाले भाई जी सु कहवा कि भाई एक पतली सी थैली दे दो, मिर्ची धाना थैली रे मायने घालूं। पर बहनों ओ प्लास्टिक अपनी धरती माँ और अपनी भोली गाय माता वास्ते कितो मोटो जहर है, थे जानो ही हो। वो प्लास्टिक कदई माटी मायने गले कोनी, जद इन सू आपा फेंक देवा तो माटी बंजर हो जावे। जद आपा इन थैलिया मायने बची खुची रोटी गालर बारे फेंका तो अपनी भोली गाय माता उन रोटी के लारे प्लास्टिक भी खा जावे। उन बेचारी रो पेट दुख है, आंतड़िया चौक जावे और या बे बीमार पड़ जावे तो कितो मोटो पाप लागे सा, और पशु भी बीमार हुए। इन वास्ते आज सु ही थारी इन सीलू जीजी ने एक नेम करो, एक वादो करो कि जद भी बाजार जाओ घर सु आपने सूती कपड़े रो या जूट रो थैलो साथे लेनर जाओ। और ए थैला जे अगर बाजार सु ना लाजे तो आपा घरे भी बना सका। हाँ थैले बनाने मायने कोई घनी देर कौन लागे, नहीं अपने पुराना कपड़ा रो भी आपा थैलो बना सका। हाँ और जब बाजार जार थैलो लेर सामान लेवन जाओगा नहीं तो थाने आपने भी कितनी खुशी हो सी। और दुकान वाले ने कहियो भाई थारी थैली या प्लास्टिक री थारे खन्ने ही रखो, मारे खन्ने मारो थैलो है। और देखो बहनों जब आपा इन प्लास्टिक री थैलिया सो पीछो छुड़ावाला नहीं तो ही आपने धरती माँ खुलर सांस लेवेली, और धरती माँ ने हरी भरी बनावन सारो अपन ने एक और मोटो काम करनो पड़सी, वनारो संरक्षण यानी पेड़ पौधारी संभाल। तो बातचीत रो दौर तो यही चालतो रहसी, पर पहले सुनावा था ना एक चोखो सो गीत।

मैडम हरो भरो खेत या हरी भरी जगह सगला ने गणी ही चोखी लागे है। और आपा राजस्थानी लुगाया तो बिया ही खेजड़ी नीम तुलसी ने पूजन वाली। हाँ अपना बड़ा बडेरा कहवे है कि एक पेड़ 100 सुखारी खान। वन रे कटाव सू गर्मी भी बढ़ जावे, दोपहर बाई ने बारह निकलानी तो चमड़ी जलन लाग जावे, सिर दुखन लाग जावे और जी घबरावन लाग जावे। तो आपने तो बस इतनो सो योगदान देवनो है कि इन बदलते मौसम रे माए आपने घर रे आंगणे बाड़े माए खेत री मेड माथे एक एक नीम शीशम पीपल या जिको भी थाने चोखो लागे वो पेड़ जरूर लगावनो है। उन पेड़ ने टाबर री तरिया पानी देर चोखो भी राखनो है। थे देखो बैना थारे आंगणो भी ठंडो रहेला और घर रे मायने छाया भी आवेली और आवन वाली पीढ़ी थाने दुआ भी देसी। लो सा इन हरी भरी और चोखी सी बात माथे दो लाइन ढबरी सुनो। कपड़े रो थैलो हाथ माए राखो, कपड़े रो थैलो हाथ माए राखो, प्लास्टिक ने दूर भगाओ सा। पेड़ लगाओ घर रे आंगन माए, धरती ने स्वर्ग बनाओ सा। धरती माँ और पेड़ा री बात सुनर जी कितो शांत हो गयो है नी। तो चलो ठंडी ठंडी छाँव और दिल ने सुकून देवन आलो ओ मीठो सो गीत सुन लेवा, जिके सु थारो कालजो राजी हो जासी। सुनो सा ओ शानदार सो गीत।

वाह सावा, कितो अनमोल और कालजे ने छूवन आलो गीत हो सा। इन गीत री मिठास रे साथे ही मने घड़ी री सुइया याद दिला रही है कि आपने इन घर आंगन कार्यक्रम रो एक घंटो कहीं पंख उलतार उडलगार उड़ गयो है, पतो ही कोनी चालो है। तो थारे चेहरे रे माथे जिकिया फूट री सी मुस्कान है नी, सच्ची कहवा आ ही अपनी असली ताकत है। तो लो सा, अब थारी सिलू जी जी थाने आशीष देवता हुआ विद्या लेवे है। हंसता रहो, चेहरे रे माथे मुस्कान रखो, नवे दिन नवी ऊर्जा ला रहे पाछी आऊला आ ही प्रीत रह वैसा। रेडियो री इन खिड़की सु अब मने इजाजत देव सा, अपनो ध्यान रख जो, चेहरे माथे मुस्कान रख जो, इन रे साथ ही मुस्कुराते हुए अपनो अपनो काम कर जो। पाछी मिलाला बहुत ही जल्दी, उन टाइम तक थारे सिलू जी जीरो मोकलो मोकलो। राम राम।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के कॉटन छिड़ी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of country extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation

0: പ്രിവേൽ ഓവർ ഛത്തീസ്ഗഡ്, കോസ്റ്റൽ കർണാടക, ഈസ്റ്റ് മധ്യപ്രദേശ്, ഈസ്റ്റ് രാജസ്ഥാൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, കേരളം, മാഹി, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആൻഡ് വിദർഭ. ഫോർ ദ ഡേ, ദ വെദർ ഏജൻസി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് അക്കംപനീഡ് ബൈ ലൈറ്റ്നിംഗ് ആൻഡ് ഗസ്റ്റി വിൻഡ്സ് ഇസ് ലൈക്ലി ടു പ്രിവേൽ ഓവർ ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡിഗഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ്, ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ് ടിൽ ടുമോറോ. മീൻവൈൽ, ദ മെറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ആസാം ആൻഡ് മേഘാലയ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ടിൽ മൺഡേ. വിത്ത് സൗമ്യ ശരൺ, ദിസ് ഇസ് വിഷ്ണു പി എസ് ഫോർ ആകാശവാണി ന്യൂസ് ഡൽഹി.
1: Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimeters of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihan Mumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
2: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and harbour railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen, and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
1: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया. भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया. पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू. भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की. भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता. गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई. अब समाचार विस्तार से. श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है. पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे.
4: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

0: यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
1: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
0: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों

0: को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और

0: गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ, हिंदी सिनेमा के विशाल आकाश में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। वे अपने अभिनय, अपनी आवाज, अपने व्यक्तित्व और अपनी अद्भुत संवाद अदायगी के कारण हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक विलक्षण अभिनेता थे राजकुमार। उनकी आवाज में एक अलग ही रोब था। चेहरे पर स्याही व्यक्तित्व और अभिनय में ऐसा आत्मविश्वास कि हर किरदार जीवंत हो उठता था। आज उनकी पुण्यतिथि पर

फिल्म संगीत का ये विशेष अंक हम महान अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि को समर्पित कर रहे हैं। करीब 4 दशक लंबे अपने फिल्मी सफर में राजकुमार ने अनेक ऐसी फिल्मों में काम किया जो आज भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उन्होंने अभिनय को केवल निभाया नहीं बल्कि उसे एक नई ऊंचाई दी। आइए उनकी यादों को नमन करते हुए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ अमर और सदाबहार गीत, और साथ साथ जानते हैं उनके जीवन, फिल्मी सफर, उपलब्धियां और हिंदी सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के बारे में।

श्रोताओं, अभिनेता राजकुमार 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म हुआ। राजकुमार का वास्तविक नाम कुलभूषण पंडित था। फिल्मों में आने से पहले वे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन अभिनय के प्रति लगाव ने उन्हें फिल्मी दुनिया में ला खड़ा किया। सन 1952 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। उनकी संवाद अदायगी इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शक उन्हें सुनने के लिए सिनेमाघरों तक खींचे चले आते थे।

श्रोताओं, राजकुमारों चुनिंदा कलाकारों में थे जिन्होंने कभी किसी की शैली की नकल नहीं की। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वक्त, काजल, हमराज, नीलकमल, हीर रांझा, पाकिजा, कारम योगी, बुलंदी, सौदागर और तिरंगा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया। आज भी उनके संवाद बड़े चाव से दोहराए जाते हैं। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उनकी कला समय की सीमाओं को पार कर जाए।

अभिनेता राजकुमार ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया, चाहे दिलीप कुमार हो, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना या बाद के दौर में अमिताभ बच्चन। हर कलाकार के बीच उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। उनके अभिनय में गंभीरता, गरिमा और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारे प्रसारण रख रखाव के चलते बंद रहेंगे। केवल न्यूज ऑन एयर ऐप और FM पर प्रसारण चालू रहेगा। मीडियम वेव पर यह प्रसारण 2 घंटे के लिए रख रखाव के चलते बंद रखा जाएगा।

फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम मेरी पसंद दिन में 3:30 बजे हम पेश करेंगे मारूफ अदाकारा शकीला से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी मरियम काजमी ने। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामईन ने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा आलमी कप में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज़ पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक ख़त में जनाब मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की ज़िंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत

अकीदे और भक्ति की जारी व सारी रवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हुई। उम्मीद है कि पूरे भारत से लाखों अकीदतमंद इस 57 रोजा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल होगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए ननवान और बालतल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ हजारों यात्रियों ने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की, जिसके दौरान ये लोग 3,880 मीटर ऊंची गुफा के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से होकर जाएंगे। अनंतनाग जिले में ननवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांधरबल जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगहें, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए हैं, ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फिजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बलोतरा में तकरीबन 1.60 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पेट्रोकेमिकल, शहरी नकलोहमल, रेलवे, सड़कों, काबिले तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों में वाबस्ता है। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे, जहां वो सानंद में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जे की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल है, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनव्वो, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई व सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकत दार बनने के लिए मदु किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनू जहानत इको निज़ाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकत दार हैं। उन्होंने कहा कि यह शराकत दारी काबिल एतमाद मसनू जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचा और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में नई सरमायाकारी और ताउन के वसी मौके फराहम करती हैं। जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने कामयाब दौरे के बाद भारत से रवाना हो गई हैं। उन्हें वजीर मम्लिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अलविदा कहा। अपने दौरे में उन्होंने नई दिल्ली में 16वें भारत जापान सालाना समिट में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब मोहतरमा ताकाइची ने दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की एक आवाज होकर सख्ती से मसम्मत की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर दहशतगर्दी भी शामिल है। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक दो रोजा तारुफी प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजू और दीगर रियासती कानून साज असम्बलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतों ने इस तकरीब में शिरकत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के

मोहम्मद रफ़ी बंदे हसन और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी मीरा सलाम, मौसीकार थे हाफिज ख़ान। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मारूफ अदाकारा शकीला से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी मरियम काज़मी ने।

0: समीन आपको वो गाना तो याद होगा, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे। तो ये नदी तो नहीं, हाँ समंदर का किनारा है, और मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है वो, उसका नाम आपको बूझना पड़ेगा। इससे पहले कि आप बूझे, चलिए हम ही बता देते हैं, आज मेरे सामने है शकीला जी। शकीला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर हमारे सामईन से और हमसे बात करने के लिए हमें इजाजत दी। शकीला जी, ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपने पहला कदम रखा तो आपकी पहली फिल्म कौन सी?
1: मेरी पहली फिल्म थी कादार साहब की दास्तान, जो 1950 में बनी थी, और उसमें मैंने वीना जी का बचपना किया था।
0: अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी आप?
1: जी,
0: चाइल्ड
1: आर्टिस्ट, यस। बस वो पहली पिक्चर थी जिसमें राज कपूर और सुरैया जी थी, वीना, अल नासिर जी थे।

0: और उसके बाद फिर मैंने फजली ब्रदर्स की पिक्चर की थी खूबसूरत, जिसमें सुरैया जी हीरोइन थी। और फिर बाद में आर पार और CID, मगर एज ए हीरोइन मैंने काम किया था अलीबाबा 40 छोर, जो मेरी पहली कॉस्ट्यूम पिक्चर थी
1: महिपाल जी के साथ।
0: महिपाल जी के साथ। और उसके बाद मैंने काफ़ी कॉस्ट्यूम पिक्चर में काम किया। दैट वाज आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट टाइप ऑफ मूवी। और उसके बाद आर पार, CID और पोस्ट बॉक्स 99, सुनील दत्त साहब के साथ।
1: आपने देवनंद जी के साथ काम किया, गुरुदत्त साहब के
0: गुरुदत्त के
1: साथ,
0: पास, हाँ
1: उनके साथ आर पार में, तो गुरुदत्त साहब
0: आर पार में
1: जी तो, और उस जमाने के ये बहुत मशहूर हीरो हुआ करते थे,
0: जी
1: है ना?
0: जी
1: तो ये दोनों फिल्मों में जब आपने काम किया तो आपको कैसे लगा?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ गुरुदत्त जी। इतने अच्छे डायरेक्टर मेरे ख्याल से शायद ही पैदा हो। एंड आई वॉज सो हैप्पी टू वर्क इन आर पार। एक कैसे ना यादगार की पिक्चर है वो।

0: सीआईडी में इट वॉज अ ग्रोडक्ट प्रोडक्शन था, मगर डायरेक्टर थे अपने राज खोसला साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, और मैंने तो एक ही पिक्चर में उनके साथ काम किया, आगे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं फिर चली गई थी।
1: उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया
0: ये
1: था।
0: हाँ उन्होंने शुरू किया,
1: उसके बाद से उन्होंने कई फिल्में मेरा साया जी, जी,
0: हाँ जी,
1: साधना जी के साथ
0: जी जी, मगर नथिंग टू मतलब जैसे गुरुदत्त जी थे और कारदार साहब थे, कारदार साहब तो बहुत ही अच्छे थे, मगर मैंने तो उनके साथ बचपना छोटा ही काम किया था, मगर आई रियली अडोर, यूज टू अडोर हिम एंड गुरुदत्त जी, और भी मतलब दूसरी पिक्चरों में किया।
1: आप कॉस्ट्यूम फिल्म से निकल के ऐसी मेन स्ट्रीम वाले, ये भी मेन स्ट्रीम ही थी, तो उसमें आ गई, उसके बाद से एकदम से आपने फिल्मी दुनिया को खैर बात कर दिया।
0: खैर एक दिन तो करना ही था, जब एक शादी कर लेते हैं तो दुनिया ही छोड़ के, मतलब मैं इंडिया में नहीं थी, चली गई थी, तो फिर वहां से यहाँ आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था।
1: लेकिन कोई भी एक्ट्रेस का, खुसूसन एक्ट्रेस का, एकदम पीक पीरियड पे जो उसकी एकदम से पॉपुलैरिटी, क्योंकि सीआईडी बहुत ही कामयाब फिल्म थी, और उस मौके पर छोड़ना, क्योंकि आदमी काम करता है तो फेम के लिए काम करता है, शोहरत के लिए करता है, और वो शोहरत पाने के बाद और पाने की तमन्ना रहती है, लेकिन आपने तो फिर शोहरत पाने का शुरू हुआ था तो आपने छोड़ दिया।
0: हाँ उस वक्त खैर अफसोस तो है, क्योंकि उस वक्त कलर पिक्चरें बननी शुरू हुई थी जब मैंने छोड़ा, और मैं मतलब अच्छा काम कर रही थी, अच्छी पिक्चरें चल रही थी, और उस टाइम मेरी लास्ट पिक्चर ये थी उस्तादों के उस्ताद और चाइना टाउन तो आज भी बहुत मशहूर है, उसके गाने बहुत चलते हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कीजिए, और मैंने जो मुझे एडवांस वगैरह दिए थे वो भी वापस कर दिए, मैंने सोचा ज़िंदगी में एक दिन सेटल होना ही है, तो उस ख्याल से मैं छोड़ के चली गई।
1: चाइना टाउन में तो शमी कपूर जी थे।
0: यस।

0: शक्ति सामन डायरेक्टर थे और काफी अच्छी पिक्चर बनी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ, गाने तो आज भी चल रहे हैं
1: जी।
0: और इट वाज क्वाइट,
1: लेकिन सीआईडी फिल्म के गाने तो जो मशहूर हुए हैं।
0: हाँ, सीआईडी फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए, और सीआईडी फिल्म के बनने के बाद जो पिक्चरें बनती थी वो दूसरे तरीके से बनने लगी, उसी तरह से, क्योंकि उसके पहले इस टाइप की पिक्चरें नहीं बनती थी।
1: सस्पेंस,
0: हाँ राइट,
1: एक थ्रिलर थी, और वहीदा जी की पहली फिल्म थी।
0: वहीदा जी की पहली फिल्म थी।

0: इस आँखों में।
1: शकीला जी, जब आप हीरोइन थी उस जमाने में हम मैगजीन्स में पढ़ते थे करते थे कि आपकी नंदा जी, वहीदा जी और एक जबीन साहिबा थी, ये चारों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में।
2: आज भी है, हम लोग काफी मजबूत है इस तरह से,
1: माशाल्लाह।
2: हाँ, बहुत अच्छी तरह से वहीदा जी, नंदा, वहीदा मतलब बेंगलोर जाने के बाद थोड़ा दूर हो गई और जबीन भी अमेरिका जाकर सेटल हो गई तो मिलना, और मैं भी यहाँ नहीं थी, मगर अभी वहीदा जी यहाँ आई है और जबीन भी यहाँ आई है, वो अपने लड़के को पेश कर रही है एज ए हीरो दिस इंडस्ट्री। अल्लाह उसको कामयाब करे, और बस मिलते हैं हम लोग, कभी कभी मिलते हैं।
1: यानी आज भी वो दोस्ती सलामत है?
2: सलामत है जी,
1: क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग सब अपने अपने तरह की टॉप हीरोइंस थी उस जमाने में
2: जी।
1: तो आपस में एक तरह की जलसी होती है, कंपटीशन होता है, इसके बावजूद भी आप लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे रही?
2: ये तो पता नहीं, मगर अच्छी दोस्ती रही, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे के लिए इस तरह से नहीं, जब हम मिलते थे तो बस मिलते थे और हम लोगों का जो उस वक्त का माहौल होता था, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। कभी हम लोग खाने पे जाते थे, कभी पिक्चर देखने जाते थे और कभी बैठ के कहीं पर बातें करते रहते थे, मगर ऐसा कभी नहीं था कि ये मुझसे बड़ी है या मैं इससे छोटी हूँ, ये ख्याल कभी नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। अब पता नहीं दूसरों का,
1: यकीनन उनको भी नहीं आया होगा।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: तभी के
2: भाई नहीं, वहीदा का नेचर ही बिल्कुल अलग है और नंदा जी का भी, शी इज आल्सो गुड, और जबीन भी इस तरह के नहीं है।
1: तो आप एस्टैब्लिश्ड हीरोइन थी सीआईडी में और वहीदा जी का पहली फिल्म थी
2: जी,
1: तो किस तरह से आपसे उनकी मुलाकात?
2: मेरी वहीदा से तो सीआईडी में हम काम कर रहे थे और तो उसके बाद एक दिन नंदा के साथ मेरी रास्ते पे मुलाकात हुई और नंदा ने कहा क्यों नहीं हम लोग आपस में सब मिले, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बाहर निकलना एक हीरोइन के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत भीड़ हो जाती थी। तो हम लोग बुरका वगैरह पहन के वहीदा जी के घर पे गए उसको डराने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं और हम लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो दरवाज़ा खोला और शायद वो लोग पहचान गई उसने, वो खुद ही दरवाजे पे थी। फिर उसके बाद हमारी इतनी मजबूत मतलब दोस्ती रही कि हमेशा मिलते रहते हैं। अभी इतना मिलना नहीं होता क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हो गए,
1: मगर
2: जब भी हम मिलते हैं बहुत प्यार से।
1: और जबीन जी से आपकी मुलाकात कहाँ?
2: जबीन से भी मुलाकात हुई थी, स्टूडियो में कहीं मिले थे और फिर इस तरह से हम लोग ने कहा चलो ये भी अकेली है, वो भी अकेले, हम सब मिलके कहीं पिक्चर जाना हो तो ये प्रोग्राम बनाया, कहीं खाने पे जा रहे, कभी ताज

0: तो अब उनको बड़ा देखकर और अपने सामने हीरो देखकर कैसा लगता है?
1: मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत दुआएं देती हूँ कि अल्लाह उसको और कामयाबी दे। क्योंकि वो मेरे मतलब बचपन की दोस्त के बच्चे हैं, तो अब ऐसा होता है ना, जो अपने नज़दीक के होते हैं उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है कि अल्लाह इनको फलता फूलता रखे। तो छोटा सा था जब मैंने उसको देखा था, मिली थी, अब तो माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो गए।
0: शकीला जी, आजकल की फिल्मों में जिस तरह के कपड़े हीरोइंस पहनती हैं और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की गाने और नाच होते हैं, अगर आप आजकल की हीरोइन होती या उस जमाने में इस तरह का माहौल या इस तरह के कपड़े वगैरह होते, तो क्या आप ऐसा करती?
1: उस जमाने में तो लोग पहनते ही नहीं थे ना, खासकर उस जमाने में जो पर्टिकुलर थे, जैसा वहीदा जी थी, वहीदा कहती थी मैं नहीं पहनूंगी स्लीवलेस, और उस जमाने में इस तरह के होते ही नहीं थे हमारे, मतलब कभी गांव का सीन है और घघरा ऊपर चला गया ऐसे डांस करते करते, तो नीचे पूरा चूड़ीदार पहनना पड़ता था, और दुपट्टा अगर हट गया तो सेंसर कट कर देते थे या गुलाब का फूल आ जाता था। आजकल का ज़माना क्या, आजकल सभी जगह ऐसा हो रहा है, ये पिक्चर में नहीं है, ये आप कॉलेज जाइए, घरों में देखिए। मैं तो कहती हूँ अच्छे अच्छे शरीफ घरानों के घरों में देखिए आप, लड़कियाँ इतनी छोटी पहनते हैं, मैं कहती हूँ क्यों पहन रहे हैं, कहते हैं इट इज़ फैशन। तो आप क्या करेंगे, पिक्चरों में तो वो आता है जो फैशन में है, पिक्चरों में जो कुछ आप देख रहे हैं इससे ज्यादा आप कॉलेज में या बाहर देखें ना तो आपको मालूम हो।
2: सही बात
1: है ना। हाँ। पिक्चरों में जो दिखाई देता है ऐसा लगता है ये पिक्चर में देखकर बच्चे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है,
0: बल्कि बाहर जो हो रहा है तो देखकर पिक्चरों में
1: भी उसको मतलब आता है उसका अक्स।
0: आजकल की जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, मार धाड़ वायलेंस और कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, तो जब आपने पिक्चर, आप पिक्चर चूज करती थी तो क्या सबसे पहले क्या देखती थी, स्टोरी?
1: वो उस वक्त पता नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं होता था जैसा अब हो रहा ना, पिक्चरें हम चूज नहीं करते थे, वो आते थे बस, पिक्चर में इस टाइप का रोल है ठीक है, इतना पर्टिकुलर नहीं हुआ करते थे लोग जितने आजकल हैं।
0: बहुत से ऐसे हैं फिल्मी दुनिया के सितारे जो अब टेलीविजन की तरफ आ रहे हैं, राजेश खन्ना, तो आपने कभी टेलीविजन पे आने का सोचा, सीरियल्स वगैरह में?
1: बहुत से लोग ऑफर लेकर आते हैं, कहते हैं क्यों नहीं काम करती हो, अच्छी लगती हो, कर सकती हो, मतलब काफी लोग। अब पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ फिर मैं उस दुनिया में वापस जाऊँ नहीं, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, अब मैं चाहती हूँ ट्रैवलिंग करूँ, ये करूँ, काफ़ी ट्रैवल तो कर चुकी हूँ, मगर काफ़ी आना जाना रहता ही है, अगर अब फिर से मैंने शुरू किया बन जाऊँगी और कुछ नहीं।
0: लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप बन जाएं ताकि हम फिर से दोबारा आपको पर्दे पर, बड़े पर्दे पर ना सही, छोटे पर्दे पर देखें।
1: देखिए जो किस्मत में होता है वही होता है, अब तो मैं आज़ाद पंछी उड़ती रहती हूँ यहाँ से फिर अपने आप को बांध लो कोई चीज, मालूम नहीं, शायद कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई मुझे रोल पसंद आ जाए या मैं सोचूं कि मैं कर सकती हूँ या मैं करूँ, इस तरह का मुझे माहौल मिल जाए तो शायद मैं कर भी लूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ मैं।
0: आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, मौसीकी के बारे में, जैसे गाने निकले उसके बारे में आपका क्या ख्याल?
1: अब क्या कहूँ, सुनने को अच्छे लगते हैं, बस वो जो पहले का माहौल था जिसमें कुछ वर्ड्स होते थे जो आपके दिल को टच करते थे, हाँ ऐसा लगता था कि ये कुछ हमसे करीब है, मगर आजकल के जो गाने देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बस
0: याद नहीं रहते, बोलने
1: नहीं याद नहीं रहते, मगर वो टच भी नहीं करते हैं, अच्छे लगते हैं, सुन लिया दिल खुश हो गया इस तरह।
0: डांसेस वगैरह, वहीदा जी तो ट्रेन डांसर, आपने कभी डांस नहीं सीखा?
1: मैंने डांस सीखा ही नहीं, किया मतलब जो डांस मास्टर बताते थे ऐसे ऐसे कर ले, भरतनाट्यम ये सब डांस जो बचपन से सीखते हैं वो अलग बात होती है, मैंने सीखा ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना मेरी जिंदगी इस लाइन में बहुत कम अरसे रही
0: जी,
1: और इतने से थोड़े अरसे में आप इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, उसको वक्त लगता है और इस लाइन में रहना पड़ता है।
0: शकीला जी, एक फिल्म आई थी हातिम ताई, है ना
2: जी,
0: उसमें जयराज जी

0: थे उसमें भी आपने काम किया था, मर्जीना का नहीं, नहीं वो तो अली वो
1: उसमें मैं परी बनी थी और वो परी ऐसी थी वो हातिम ताई की तो एक अलग ही कहानी बन गई क्योंकि लोग समझने लगे मैं छोटी सी परी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स अहमदाबाद से इधर से उधर से आते थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स आकर कहते थे आप ये बच्चों को समझाइए क्योंकि वो कहते हैं कि ये परी हमको कहेगी तो हम आगे पढ़ेंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ, इत्तफाक देखिए कैसा होता है। और फिर मैं वो बच्चों को समझाती थी, उसमें एक लड़का था जो कुछ 18 साल का था उस टाइम, तो उसने कहा नहीं वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं पढ़ूंगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो लड़के को लेकर उसके पेरेंट्स आए और दरख्वास्त की कि प्लीज आप इसके साथ एक दो मिनट बात कीजिए, एक तो बीमार हो गया कहीं तरफ पे से गिर गया और उसने उसको यकीन हो गया कि परी है और वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं आगे पढ़ूंगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कभी कभी ये सोच के कि कितना अच्छा काम मैंने किया, वो बच्चे से बात की और उसके बाद पता चला कि उसने अपनी मतलब तालीम मुकम्मल कर ली, फिर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अभी कहीं अमेरिका में सेटल है, कभी लेटर लिखा था मुझको कई साल पहले। तो एक तरह का दिल में इस तरह से खुशी होती कि ये परी बन के बहुत बड़ी बात हुई
0: जी, एक जिंदगी तो सुधरी गई।
1: और खालिद महमूद जो राइटर हैं अभी,
0: जी जी, अभी जिन्होंने फिजा बनाई,
1: जी फिजा बनाई, तो उन्होंने मुझे एक दफा हम वेनिस में फिल्म फेस्टिवल में गए थे तो उन्होंने मुझे वहां पर कहा अरे शकीला जी हाउ नाइस टू मीट यू। मैंने कहा क्यों, कहते मैं छोटा था ना तो मैं आपके पिक्चर देखता था कई कई बार देखता था। मैंने कहा क्यों, कहता वो मुझे परी बहुत अच्छी लगती थी और उसने बहुत बड़ा सा मिड डे में उन्होंने अपनी तरफ से आर्टिकल लिखा था, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दिखा थी और वो बहुत खुश हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे सच इतनी वो कभी आप देखेंगे पिक्चर ना तो आपको लगेगा छोटी सी परी और वो आकर बॉटल में बंद कर देते हैं। तो काफी लोगों ने कई कई बार देखा और मुमताज ये लोग कहते हैं हमने 100 बार देखा। मैंने कहा क्यों, कहते हैं हमें बहुत अच्छी लगी और तुम परी बनती हो ना तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। मुमताज और मलका ये लोग से भी मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात है क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे रहते थे, तो अभी भी वो मुझे इतनी इज्जत देती है जैसे मैं उनकी कोई बड़ी बहन हूँ।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत बड़ी बात होती है। और अली बाबा 40 चोर फिल्म जो आई थी उसमें शायद आपने मर्जीना का रोल,
1: मर्जीना का रोल किया था, उसमें डांस किया था, डांस मतलब जो मास्टर बताते हैं उसी तरह का, मगर वो पिक्चर बहुत सक्सेसफुल
0: बहुत ज्यादा
1: और मेरे ख्याल से जितनी कॉस्ट्यूम पिक्चर मैंने काम की है सब सक्सेसफुल है अफ्रीका में, मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम लोग बहुत होते हैं। तो एक दफा अभी 10 साहब मिले थे कुछ एक पिछले साल, तो मुझे कहने लगे यूसुफ साहब के सामने कहा अरे शकीला याद है तुम्हें पोस्ट बॉक्स में काम कर रही थी, तब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा क्यों, कहते कोई मलेशिया से आया था, कोई मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, कौन था पता नहीं, डॉक्टर था, तो उसने कहा मुझे यहाँ मिलना है तो सिर्फ शकीला से मिलना है। तो बोले हमने पूछा आपको शकीला से क्यों मिलना है, बोले हमने उसकी वो पिक्चर देखी है तो हमको उनसे ही मिलना है, मतलब इतने फेमस थे वहाँ इंडिया में इतना नहीं था मगर अफ्रीका मलेशिया और जकार्ता ये सब जगह पे। और वो बोले मुझसे बोले मुझे किसी और से नहीं मिलना उसी से मिलना है, और दत्त साहब ने उनको बुलाया, मेरी शूटिंग चल रही थी उनके साथ ही, तो उस वक्त मैं उनसे मिली। बहुत बहुत खुशी होती है कि चलो कोई इस तरह से मतलब याद कर लेते हैं।
0: शकीला जी आपको कैसा लगता है जैसे हम जैसे लोग आपको कहते कि हम आपके फैन हैं और आपकी फिल्में देखते थे और आपका काम पसंद करते थे, तो इतने जमाने के बाद इतना एडुलेशन या कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिली खुशी होती है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं और याद रखे हैं। और
0: अपने सुनने वालों को बताइए कुछ पैगाम।
1: बस मेरे सुनने वाले को यही पैगाम है, सबको मेरे तरफ से आदाब शुक्रिया और फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी,
0: फिर से बातचीत होगी,
1: इंशाल्लाह।
0: बहुत

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे धर्मवीर फिल्म का नगमा। नगमा निगाहते आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गई, जिसे मौसीकी सजाया जतिन ललित ने। फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

किशोर कुमार की आवाज़ में सामीन आप सुन रहे थे ये नगमा, फिल्म थी मशाल। मौसीकार थे हृदयनाथ मंगेशकर। और लीजिए अब सुनिए मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों को फिल्म है शोर। मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बाजीगर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ की आवाज़ में। नगमानिगार थे रानी मलिक, मौसीकार अनु मलिक। और अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में शंकर जयकिशन की मौसीकी से जाए नगमा, फिल्म है छोटी सी मुलाकात।

दादीमा फिल्म के लगभग आप सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था रोशन ने। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में सुनी कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म है डॉन।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

ಬೊಮ್ಮದೈ ನಡರಿಯಾಗುತ್ತೇ ಬಬುವಾ ಇಹ

इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए हैं ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई राबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बालोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पेट्रोकेमिकल, शहरी नकलो हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता हैं। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे जहां वो सानंद में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरशुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल है जिस पर 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज बातचीत से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मीशत तेजी से बदल रही है जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में इजाफा, तोानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकत दार बनने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुश्तरक खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनूई जहानत इको निज़ाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकत दार हैं। उन्होंने कहा कि शराकत दारी, काबिल एतमाद मसनूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचा और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमाकारी और ताउन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इकतसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछले एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दो तरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खारजा ने तिब्बी राहत की जारी कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासर लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया है। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2,600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में एसओचएम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निजाम से मुतारफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदऊ करना है। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क के नौजवान विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। पाकिस्तान में आज शरारती जोब शाहरा पर एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने से 40 अफराद हलाक और 8 दिगर जख्मी हो गए। ये हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के नजदीक दनासर इलाके में पेश आया। हंगामी तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले मरकज के मुताबिक जाए हादसा से 40 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और बचाव कार्रवाई जारी है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनेई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से बाज रहने को कहें।

0: इसराइल के वजीर दफा इसराइल कार्ड्स की जानिब से यह कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनेई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खाजा ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच कनाडा के वैनकूवर में खेला गया। स्विट्जरलैंड की तरफ से इम्बोलो ने खेल के 10वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि वक्फे के बाद नोडोए ने दूसरा गोल कर दिया। इस तरह स्विट्जरलैंड ने इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच न हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। इधर कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले मैच में स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर में फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानब भारत के सफर में शरीक हों। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जल्जले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए हैं और हजारों अब भी लापता हैं। फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब हमारी आज की रात्रिकालीन सभा आरंभ होती है और सभी मीडियम वेव के श्रोताओं का इस सभा में स्वागत है। संध्या के 5 बज चुके हैं दोस्तों, आइए सुने कार्यक्रम युवा वाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों की सेवा में आज नमस्कार। जसवीर सिंह की तरफ से युवा साथियों कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं और आज की इस कार्यक्रम में, जैसे कि पूर्व में हम आपको बता चुके होते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत करेंगे आज की बात विषय पर और साथ में सुनाएंगे चंद फिल्मी गीत। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की बात से। और दोस्तों आज की बात पे हम बात करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना क्या है। दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना है और इसकी शुरुआत साल 1998 में की गई थी। इस योजना का संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान द्वारा किया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों की क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए योजना किसी जीवन दान से कम नहीं है। और दोस्तों इसके जो मुख्य उद्देश्य ये थे कि अक्सर देखा जाता है कि 10वीं के बाद कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये योजना उन्हें 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेने के लिए आर्थिक रूप से प्रेरित करती है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये स्कॉलरशिप 10वीं राजस्थान के तहत की सबसे लोकप्रिय योजना है। और दोस्तों इसमें जो सरकार ने निर्धारित किया है कि 10वीं कक्षा में कोई भी बालिका अगर 75% अंक अधिक प्राप्त करती है या उससे अधिक प्राप्त करती है तो उस पर 3000 रुपये इसको मिलते हैं, और 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उससे 5000 पुरस्कार मिलते हैं। और दोस्तों इन सभी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसी तरह से बालिकाओं को उनकी शिक्षा में आने वाली बाधा, जो कि मुख्य रूप से पैसा होता है, फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, उनको उस रुकावट से दूर करके बालिका को शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए एक योजना, एक अवसर दिया जाता है। और दोस्तों

ये अवसर उन सभी बालिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बालिकाएं होनहार होती हैं, मगर कुछ पैसों की, घर की परिस्थितियों की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाती। और इस बात को देखते हुए सरकार ने उन छात्राओं को पुरस्कारित और पुरस्कार के रूप में जो एक आर्थिक सहायता दी जाती है, और ताकि वो अपने उन ख्वाबों को पूरा कर सके जो ख्वाब उसने कहीं देखे हों। और दोस्तों, इसी तरह से इसका जो प्रेरणादायक जो योजना है वो इसलिए ही बनाई जाती है ताकि उन 10वीं और 12वीं में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को नगद राशि दे दी जाए, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से प्रारंभ रखें। और दोस्तों, प्रारंभ रखने के साथ साथ दोस्तों ज़िंदगी भी बहाल हो, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। और इस बात के लिए ये भी बात ज़रूरी है कि हम आप सभी अपनी ज़िंदगी के अंदर संगीत को भी लेकर आए, क्योंकि मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है कि संगीत कला का एक रूप है जो विभिन्न प्रकार की

देखे हूँ। और दोस्तों इसी तरह से इसका जो प्रेरणादायक जो योजना है वो इसलिए ही बनाई जाती है ताकि उन 10वीं और 12वीं में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को नगद राशि दे दी जाए ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से प्रारंभ रखें। और दोस्तों प्रारंभ रखने के साथ साथ दोस्तों ज़िंदगी भी बहाल हो, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। और इस बात के लिए ये भी बात ज़रूरी है कि हम आप सभी अपनी ज़िंदगी के अंदर संगीत को भी लेकर आए, क्योंकि मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है कि संगीत कला का एक रूप है जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का एक साथ रख कर या मिश्रित करके नई ध्वनि बनाई जाती है जो मनुष्य को अच्छी लगती है, तो उसे संगीत कहा जाता है। संगीत दोस्तों ग्रीक शब्द मुसिके से लिया गया है जिसका अर्थ है संगीत की कला। म्यूज में प्राचीन ग्रीस में संगीत, कविता, कला और नृत्य की देवी भी शामिल होती थी। और दोस्तों इन सभी बातों से संगीत हमें रचनात्मक बनाता है और ये रचनात्मक की कुंजी है। संगीत हमारे दिमाग को बेहतर बनाता है, यह इसे और अधिक रचनात्मक और नवीन बनाता है। संगीत हमारे दिमाग को कला से भर देता है। और साथियों जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो मैथ के टीचर थे वो अक्सर ये कहा करते थे कि जब भी आप मैथ का सवाल हल करें तो पास में धीमी आवाज़ में आप कोई भी संगीत चला लीजिए ताकि आपको अपने मैथ के क्वेश्चन करते समय आपके दिमाग पर जोर ना पड़े और आप एक खुशनुमा माहौल में और एक अच्छे संगीत के साथ उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। और मैंने दोस्तों खुद अपने साथ एक ये उदाहरण या ये एक एक्सपेरिमेंट किया है कि जब भी मैं मैथ के सवाल को उसकी हल करने की कोशिश करता था तो साथ में छोट धीमी धीमी आवाज़ में एक संगीत चला दिया जाता था जिससे हमारा दिमाग उस कैलकुलेशन को करते वक्त बोझिल नहीं होता था। खैर दोस्तों अब बात संगीत की है और संगीत के अंदर हम आपको गीत ना सुनवाएं ये कभी नहीं हो सकता। और गीत बिल्कुल तैयार है फिल्म सागर से, आवाज़ें किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीत जावेद अख्तर का, संगीत जावेद आर डी बर्मन का, और गीत जावेद अख्तर का। और सुनिए ये सागर फिल्म से गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यही वह साथियों, संदेश से पहले हमने आपको सागर फिल्म का ये गीत सुनवाया था। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और दोस्तों, बात गीत और संगीत की थी और बात अपने ज़िंदगी थी, जीवन की। और जैसे कि हमने बात की थी कि संगीत सीखने को अधिक मनोरंजक बनाता है, जैसे कि हमने बात की थी कि मैथ्स के जो सवाल थे हम धीमी धीमी आवाज़ में संगीत चलाते थे। और याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए संगीत श्रोताओं एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। हम सभी ने देखा है अपने पाठ्यक्रम को सीखने की तुलना में एक गाना बहुत आसानी से और तेज़ी से सीख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मन जो संगीत का आनंद लेता है, हमारा मन जिस चीज़ का आनंद लेता है उसे वह अपने पास रख लेता है। यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि जब भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं तो वे क्षण हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाते हैं। और दोस्तों, संगीत हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। इसमें अधिकांश जब हम अपने पसंदीदा गीत संगीत को सुनकर दुखी होते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगीत हमारे लिए तनाव दूर करने का काम करता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हम आराम और शांति महसूस करते हैं, लेकिन हर संगीत हमें खुश नहीं कर सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का संगीत सुन रहे हैं। संगीत कुछ भी सेकंड में हमारा मूड बदल सकता है। जब हम कुछ डांस बीट्स सुन लेते हैं तो उसका आनंद ले रहे होते हैं, तो कभी कभी उस डांस पर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई आकर अचानक म्यूज़िक रैक बदल दे और कोई उदास इमोशनल गाना डाल दे तो हमारा मूड अचानक बदल जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो संगीत बच्चों की भाषाई कौशल को विकसित करता है। और ये बात बिल्कुल सही है युवा साथियों कि गाने और कविताएं बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में ही भाषा कौशल विकसित करते हैं। बच्चे बोलना, पढ़ना, लिखना शुरू करके और पहले आवाज़, स्वर, शब्दों को पहचानना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से संगीत क्या करता है, बच्चों की भाषाई कौशल को विकसित करता है। और संगीत सुनने से कौशल विकास भी होता है बच्चों में, और संगीत से गति उत्पन्न करता है। और दोस्तों, संगीत तो एक ऐसा चिकित्सा है कि जिसके प्रयोग से किसी व्यक्ति को ठीक करने की सोच को संगीत चिकित्सा कहा जाता है। संगीत चिकित्सा कैंसर के रोगियों पर, ADD से पीड़ित बच्चे या मांसपेशियों में दर्द या अवसाद के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मैंने

जैसे भी आपको हमने पहले बातचीत की कि दोस्तों जब हम संगीत सुन रहे होते हैं उसके आनंद में, उसकी बीट्स में, उसके शब्दों में हम जब डूबे होते हैं तो हमें दूसरी तरफ क्या हो रहा है हमें कुछ भी मतलब या उसमें कुछ भी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उस संगीत में पूरी तरह से डूबे होते हैं। इसलिए दोस्तों चिकित्सा के अंदर जब भी आपको अवसाद या दर्द हो रहा होता है तो संगीत को धीमी धीमी आवाज़ों में लगा कर आप पर हेडफोन्स लगा दिए जाते हैं ताकि आप उस संगीत के अंदर डूबे रहें और वो जो दर्द है, ये अवसाद है, वो जो रोग है, उसको धीरे धीरे भूलते जाएं। जब हम भूलना छोड़ेंगे, भूलना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर जो वो दर्द चल रहा है या वो दर्द या वो रोग चल रहा है वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी जहन से हटता जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने मन में ये बात कहना लग जाते हैं कि हमारे फलां जगह पे दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये दर्द है। और जब हम संगीत सुन रहे होते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों ये संगीत हमारे पूरी ज़िंदगी के लिए, या यूँ कहें कि ज़िंदगी भर के लिए संगीत हमारे लिए हमारी दोस्ती का काम करता है। और दोस्तों जब दोस्ती की बात की है और काम की बात की है और संगीत की बात की, तो एक गीत हम आपको वो सुनवा देते हैं साजन फिल्म का, अलका याग्निक की आवाज़ों में और शब्द समीर के और धुन नदीम शरवन की। तो सुनिए ये गीत।

यहाँ युवा साथियों, बात हम करें संगीत की तो निष्कर्ष करें इसका, अगर हम बातचीत का निकालें तो मनोरंजन के अलावा संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे मस्तिष्क और उससे जुड़ी क्षमताओं का विकास करता है, बच्चों में कौशल विकसित करने में, उन्हें पढ़ाने में भी फायदेमंद है। म्यूजिक थेरेपी खतरनाक और कुछ पुरानी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन युवा साथियों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी तरह के संगीत सुन रहे हैं, इसे हमें बड़ी गौर से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें असभ्य भाषा या अपमानजनक शब्द होते हैं, जिन्हें बच्चों के लिए या बच्चों को सुनना नहीं चाहिए, अन्यथा वे उन्हें अपने दिमाग में बनाए रखेंगे, जो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हम दोस्तों बात करें तो संगीत हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे हर किसी के दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। और शामिल इसलिए भी हो दोस्तों, क्योंकि गीत जो होते हैं वो बड़े मधुर और मन को छू जलाने वाले होते हैं। कभी कभी हम टेंशन में होते हैं और हम परेशानी में होते हैं, तो इन गीतों की वजह से हम दोस्तों अपनी परेशानी को और उस टेंशन को दूर कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने जीवन में संगीत का जो महत्व है धीरे धीरे समझने लगते हैं। खैर दोस्तों, अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा देते हैं, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवन का, और फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल।

श्रोता, अभी आपने गीत सुना, आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। खैर युवा साथियों, बात संगीत और जीवन से बढ़कर अगर हम

करें दोस्तों अपने जीवन के अंदर जो हमारे पशु पक्षी हैं उनकी हम बात करें तो कुछ ऐसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए वो अधिक सूचित या कह लीजिए क्षेत्र का संचालन केंद्र सरकार करती है जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आता है। क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो प्राणी जो हमको विशिष्ट प्राणी हैं या प्रजाति के प्राणी हैं तो उनको भी हमको एक संभाल कर रखना पड़ता है ताकि हमें पता लगे कि ये प्राणी किस तरह के हैं। खैर दोस्तों हम बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अगर इन वन्य जीव संरक्षण की राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है जो है, और इसकी स्थापना 1955 में वन्य जीवन अभयारण्य के रूप में की गई थी और 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। खैर दोस्तों हम बात करें दूसरे अगर राजस्थान के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की तो केवला देव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है और ये भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और 27 अगस्त 1981 को इस राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और हम तीसरे की बात करें तो दोस्तों मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और ये राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है दोनों जो क्षेत्र में दोनों राज्यों में। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1955 में की गई थी और 9 जनवरी 1912 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और ये राजस्थान का तीसरा और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। अगली बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में जो बाघ परियोजनाएं हैं उसकी हम बात करें तो ये परियोजनाएं वर्ष 1973-74 में इसको आरंभ किया गया था और इसको रामथंबोर बाघ परियोजना को 1973-74 में दर्जा दिया गया था। और ये हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय जीवों के लिए हमारे जीवों की संरक्षण के लिए ये भी उद्यान है। रामसर साइट ये भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है दोस्तों और इस भूमि के नम भूमि क्षेत्र या वेटलैंड जोन क्षेत्र को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष 1971 में रामसर ईरान में अर्धभूमि क्षेत्र संरक्षण हेतु वैश्विक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। इस वैश्विक सम्मेलन में विश्व में जो भी आर्द्रभूमि है उनको संरक्षित करने के लिए इसका नाम दिया जाता है। खैर दोस्तों बात अब उन उद्यानों की जो राष्ट्र के साथ हमारे राजस्थान के अंदर उद्यान थे। अब हम बात करें दोस्तों कि अब गीतों की, तो गीतों की श्रेणी में अगला गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो फिल्म का नाम है सड़क और आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की और शब्द रचना समीर की और धुन नदीम शरवन की। तो सुनिए ये गीत सड़क फिल्म से।

सो तो बात अब हम करें तो हमारे ज़िंदगी के अंदर जल, वायु और ध्वनि, ये तीन तरह की ज़रूरतें हैं और इन तीनों की ज़रूरतों में अगर हम थोड़ा सा प्रदूषण फैला दें तो निश्चित रूप से लिए ये हमारे गल की फांस बन सकती है, हमारे लिए ये चिंता का विषय बन सकती है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, तो तीनों प्रदूषणों की वजह से हम अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर ये जो प्रदूषण है अगर उसको हम फैलाते हैं तो उसको कंट्रोल करना भी हमें चाहिए, या उनकी बात करें कि उन प्रदूषणों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसका जो पूरी तरह से सहयोग है वो भी हमें करना चाहिए। और दोस्तों अब बात अगर हम ध्वनि प्रदूषण की करें तो दोस्तों बढ़ते हुए हॉर्न, प्रेशर वाले हॉर्न जो यातायात के साधनों के अंदर लगे होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों इस तरह से हम बात करें जल प्रदूषण की और जो फैक्ट्री से और जो निष्कृषित जो पदार्थ जल होता है वो

बहा दिया जाता है पानी, पीने वाले पानी के अंदर नहरों में, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उन पानियों को पीने से हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और वायु प्रदूषण में दोस्तों, जैसे कि यातायात से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से निकलता हुआ धुआं भी वायु प्रदूषण हमारे लिए एक समस्या का एक साधन है। और हमें चाहिए कि इन सभी समस्याओं को जहाँ तक हो सके हमारे बस में, हमारे अधिकार में है, हम उसे नियंत्रण में करें, हम उसे चाहें कि उसको हम कंट्रोल में करें, और ताकि ये जो ज़िंदगी है हमारी, जो इन प्रदूषणों की वजह से हमें थोड़ी सी रुकावट आती है, या यूँ कह लीजिए कि हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो उन सभी मुश्किलों को हम निजात पा जाएं, उनसे हम अपने आप को आज़ाद कर लें, तो बस इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, सरकार भी बहुत कोशिश करती है दोस्तों, इन जितनी भी प्रदूषणों के कारण है उन पर हमारे जो वैज्ञानिक है वो दिन दिन आपके लगातार वो 24 घंटे इस बात के लिए रिसर्च करते हैं कि किस किस तरह से कैसे कैसे किन किन गाड़ियों पर या किन किन प्रदूषणों पर कैसे कैसे नियंत्रित किया जा सके। और जैसे गाड़ियों की हम बात करें तो जैसे ई व्हीकल आ गए हैं दोस्तों, बैटरी से जो चलने वाले हैं, और इन सभी व्हीकल्स के अंदर दोस्तों हमें देखना चाहिए कि जो प्रदूषण है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और चाहे वो CNG या उस पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी पेट्रोल और डीजल से कम धुआं, मतलब बिल्कुल धुआं नहीं करती, जिससे कि ये प्रदूषण हमारा नहीं होता और हमें स्वच्छ मतलब वायु जो हमें मिल जाती है, जो हमारे लिए प्राणदायक है और ज़रूरी भी है। बढ़ते हुए शहरों के अंदर ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है दोस्तों, वो सभी प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार समय समय पर नियंत्रण प्रयास कर रही है, मगर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सभी समस्याओं से आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम उनका साथ दें। और अब बात ये है कि दोस्तों हम भी ये बात करें कि साथी फिल्म का हम आपको गीत सुनवा देते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, और जो शब्द रचना है नवाब आरजू की और धुन नदीम शरवन की।

ये युवा साथियों, अभी आपने जो गीत सुना था फिल्म साथी का, और आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और साथियों की। खैर दोस्तों, कार्यक्रम हमने 45 मिनट का सफ़र तय कर चुके हैं और अब हम बात करें दोस्तों आज के इतिहास की, यानी 3 जुलाई की, तो उसके हम परिचर्चा के अंतर्गत शुरू करते हैं दोस्तों। और बात करें 3 जुलाई 1972 को, तो भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए और 1992 3 जुलाई को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई और 3 जुलाई 1996 को हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ और हमारे 1999 को परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का निधन हुआ था दोस्तों। और 3 जुलाई 2004 को रूस की मारिया शारापोवा महिला विंबल्डन में चैंपियन बनी थी और 3 जुलाई 2005 को महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबल्डन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था। और ये 3 जुलाई को दोस्तों 2020 में प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हुआ था। खैर दोस्तों, ये वो बातें थी जो आज की बात की और इसको हमने कार्यक्रम में शामिल इसलिए भी करते हैं कि दोस्तों कि आपके मनोरंजन में, आपके ज्ञानों में, आपके ज्ञान में वृद्धि हो और हम भी चाहते हैं कि आप सभी इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहें और अपने जो कार्यक्रम की प्रतिक्रिया है वो हम तक लिखकर भेजते रहें। तो आज के इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा देते हैं, तो ये गीत है फिल्म सड़क से। अभी आपने जो साथी फिल्म का सुना था ये गीत, अब हम आपको सुनवा देते हैं सलामी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें कुमार सानू और आशा भोसले की।

जी हाँ युवा साथियों, आज के इस युववाणी कार्यक्रम में हमने आपसे बातचीत की, जानकारी दी आज के इतिहास के बारे में, और बहुत जो चर्चा है आज के समसामयिक विषय हैं उनको हमने आपसे साझा किया। खैर दोस्तों, बात अब इस प्रोग्राम की, इस अंक की, और ये अंक बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है, मगर उससे जाने से पहले हम बात कर दें कल के युववाणी अंक में। तो कल हम आपको जानकारी देंगे सभ्यता स्थल कालीबंगा आहड़ की, और एक विषय पर हम बातचीत करेंगे, जीवन में अध्यात्म का महत्व। बीकानेर के बारे में हम जानेंगे और घग्गर नदी का जो महत्व है उसकी भी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे 4 जुलाई यानी आज के इतिहास की। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के इस युववाणी अंक की। तो इस युववाणी अंक के लिए हम अपने अंतिम गीत को लेकर आपकी सेवा में बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और ये गीत हमने लिया है राधा का संगम फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर कीर्ति कुमार की, और शब्द रचना हसरत जयपुरी की, और धुन अनु मलिक की। सुनिए राधा का संगम फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं। आइए सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सराकी की कड़ी संख्या 25वीं। चौपाल कार्यक्रम में आज सुने कार्यक्रम गीतारो गजरो और फिल्म संगीत संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुने मिट्टी दी खुशबू। आज इस कार्यक्रम में आपको हम सुनवाएंगे दिवस विशेष पर दिवंगत मोहन आलोक की जयंती पर मोहन आलोक से राजेश चड्ढा की पूर्व में रिकॉर्ड की गई बातचीत। समय फिर से नोट कीजिए, आज रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। लीजिए आप सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सवेरे 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सवेरे 6:45 पर चिंतन विषय रहेगा सत्संग और वाचक सुनेंगे बाबा ब्रह्मादास का। कार्यक्रम विवरण सवेरे 6:50 पर। खेती और अवस्थे कार्यक्रम में सवेरे 7:10 पर जानकारी सुनिए कीटनाशक छिड़कते समय सावधानियां। इसके अलावा आपको लोक भजन भी सुनाया जाएगा। मानस गान की कड़ी संख्या 294 सुनवाई जाएगी सवेरे 7:20 पर। सुबह 7:30 पर सुप्रभात कार्यक्रम में जानकारी के विषय होंगे मानसिक स्वास्थ्य और संगीत, जीवन में हास्य विनोद से ताजगी और परोपकार विषय पर जानकारी। सुगम संगीत में चंद भजन सुनिए सवेरे 8:45 पर। मरुमंगल में सवेरे 9:10 पर कलाकार होंगे अनिल कुमार। फिल्म संगीत डुएट सॉन्ग सुनिए सवेरे 9:30 पर। फिल्म संगीत सवेरे 10 बजे और फिल्म संगीत फिर आप सुनेंगे सवेरे 11 बजे। कार्यक्रम विवरण सुनेंगे आप दोपहर 12 बजे और दोपहर 12:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा अनुरोध गीत। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में चंद गजलें। दोपहर 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी, विषय होगा उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर, इसमें जानकारी का विषय होगा बच्चों पर रखे विश्वास, हस्तकला की उपयोगिता, ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान, टिफिन में कुछ नया भी हेल्दी भी, ये विषय रहेंगे दिन में 1:05 पर। फिल्म संगीत दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम होगा। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सराकी की कड़ी संख्या 26वीं। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे और इसमें जानकारी के विषय होंगे जहर छोड़ो जैविक अपनाओ, बाल विवाह अभिशाप, बरसात के

पानी का सदुपयोग और उपलब्ध रही तो बाजार भाव मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे चंद फिल्मी भक्ति गीत, फिल्म संगीत एक ही फिल्म से जानकारी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम रात्रि 8 बजे, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत और इसमें आप सुनेंगे चंद गजलें। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओ, ये तो थे कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में आप सुनेंगे दिवस विशेष पर दिवंगत मोहन आलोक की जयंती पर मोहन आलोक से राजेश चड्ढा की पूर्व में रिकॉर्ड की गई बातचीत। समय एक बार फिर से नोट कीजिए, आज रात्रि 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर

सुनेंगे दिवस विशेष पर दिवंगत मोहन आलोक की जयंती पर मोहन आलोक से राजेश चड्ढा की पूर्व में रिकॉर्ड की गई बातचीत। समय एक बार फिर से नोट कीजिए, आज रात्रि 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने वाले हैं। आइए अब सुने सहरायकी की कड़ी संख्या 25वीं।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते पेश करेंदा। अज असा आप सब दे सामने हाजिर हैं एक कहानी गिन के। ही कहानी दे कहानीकार हैं श्री रामकृष्ण शर्मा जी, ते कहानी दा शीर्षक है लगाव।
1: सराय की सुनने वाले सारे बहन भरावों को मेरा नमस्कार। आओ सब तो पहले सुनते हैं ये सराय की कहानी। गर्मी का मौसम आई, असा पूरा टब्बर अपने ग्रां गए हुए से वल्ले तो डिठा ड्राइंग रूम में इड्डे उड्डे काफ़ी तिणके फैले हुए हैं। अरे ये तिणके कितों आए हो सन? डिठा तो एक चिड़िया ने एग्जास्ट पैन के पिछों अपना घोंसला बना दिता है। घोंसला हटावन को थे उसे तो डिठा ओह इन्हें तो अंडे भी पे हुए हैं, हूँ के करूँ? ड्राइंग रूम तो घोंसला हटावना तो पोसी ही, पर हूँदे च अंडे भी हैं तो मन ना मनना। चलो जिस वेले बाल बड़े थी वे सन उड़न जोगे तो मौका देख घोंसला हटाई देसू, यो सोच असा अपने अपने धंधे च लग गए। उस अचानक एक दीवार घोंसला पता नहीं किवें थले आ पिया। कुछ अंडे तो टुट गए हैं पर एक अंडा पूरी तरह सही सलामत बच गया है। असा घोंसले को उथाईं दे उथाई पिया रावण दिता। कुछ दीवारा बाद हुंदे विचू बाल निकल आया जो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा जिहा पिया लगता है। चिड़िया हुंदे आले दुआले मंडरांदी रहिंदी, बाहरों चुगा लै आंदी ते बाल दा लालन पालन करन लगी। बाल हुण कुछ वड्डा थी गया आई पर हुंदे पक हाली उहने शुरू कहना थाया। असा ड्राइंग रूम में बैठे हुए आसे ते पखे पूरी स्पीड ते चलते पए हां। चिड़िया अपने बाल को बाहर तो ला ला के चुगा खवेंदी पई आई। अचानक चिड़िया एक पखे नाल टकरा गई ते जख्मी थी गई। असा हुण कुछ चाहता ते जो जिवें थी सगा उहदा इलाज कीता। रात को हुण एक कटोरी च प्राण पानी ते एक कटोरी च कुछ खावण दा समान रख के सम गयो से। सवेरे सवेरे ची ची दी आवाज सुन के अचानक नींद टुट गई। चिड़िया ठीक थी गई है शायद, ये सोच के मैं वातू संभण की कोशिश करन लगा पर नींद ना आई। चलो चिड़िया को भी लेख गिदा बने, मैं ड्राइंग रूम में चला गया। ये क्या? चिड़िया तो अपने बाल को मरी हुई हालत पई हुई है ते बाल हाई के लगातार चींची ही कीती वेंदा है। चिड़िया रात को बाल को किवें पुजी हो सी? हुंको के आखा या समझाया हो सी? ये सब सुचेंदे हुए बड़े भारी मन नाल चिड़िया को उत्तों हटाया। हुण इस बाल दा क्या थी सी? ये किवें जिंदा रहा सी? चींची दी आंदी लगातार आवाज कलेजे को अंदर तक हिलेंदी पई आई। हिंकू कुछ खवा के दे दे हैं, शहद खा के ने ब्रैड का एक पूं छोटा जहा टुकड़ा करके खावण को दिता तो बाल ने खा गिदा। सिलसिला चल निकला, दिल को तसली थी ये सोच के बाल हुण शायद बच पोसी। दीवार गुजरते रहे, बाल दे पख उगण लगे हन। वातों दिहाड़ा भी आ पुजा जिस वेले वह थोड़ा थोड़ा उड के इड्डे उड्डे फुदकण लगा। असा सारे हुंकु बाल आली हरकत करेंदे देख बहुत खुश थींदे। वक्त दे नाल वो चिड़िया बन वड्डी थी गई ते हुण उड्डण भी लगी है। हक जता के खाना मंगदी ते खांदी, पूरे घर च उड़दी इठलांदी फुदकदी फिरदी रहिंदी। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। गर्मियों च भी असा पखे बंद करके रखेंदे किथे वह भी माँ की तरह टकरा के जख्मी ना थी वञे। हुण हिंदी देखभाल साडा हर रोज़ के कमां दा

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराइकी। इसमें आप सुना आप 25वीं कड़ी इस कार्यक्रम की, मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल अपने ओजोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

मीडियम वेव 326.70 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालोतरा के पचपदरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। वे जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाना है। इसे विस्तृत और सतत संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इससे स्वदेशी विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार की उड़े देश का आम नागरिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ ही जोधपुर रिंग रोड द्वितीय खंड पर 4 लेन निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे। वे 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जोधपुर और बालोतरा का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल होने वाले समारोह की तैयारियों के जायजे के लिए बालोतरा पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे जोधपुर पहुंचे, वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ लाइन है और राजस्थान में तो ही लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।

0: गौरतलब है कि पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले 21 अप्रैल को करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के एक दिन पहले रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगने की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार HPCL रिफाइनरी से सालाना 9 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाना है। यहाँ के तेल को भारत सहित दुनिया भर के 40 देशों में निर्यात भी किया जाएगा। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की अद्वितीय इंजीनियरिंग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रिफाइनरी से 1,35,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के साथ जोधपुर ने भी आधारभूत प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों कल होने वाले जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण को लेकर कहा कि इससे समूचे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी।
1: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि नई सुविधा शुरू होने के 2 दिनों के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है, क्योंकि इससे आधार नंबर रखने वाले लोग ये जान पाते हैं कि उनके आधार का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहला जत्था आज सुबह पहलगांव और बालटाल मार्गों से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ही मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी तय तिथि की बारी पर ही यात्रा में शामिल हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ यात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और क्षेत्र के साथ राज्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिन के आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे विधायी बहसों के साथ उनके समाधान पर भी बात करें। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थाओं में बदलाव ला रहे हैं।
2: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं।

0: दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
1: राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर दी गई छूट 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्थानांतरण प्रतिबंध की छूट को 5 जुलाई से 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिणी पूर्वी जिलों से आगे बढ़ते हुए उत्तरी इलाकों को भी भिगो दिया है। मौसम विभाग के अनुसार करीब हफ्ते भर की देरी से आए मॉनसूनी बादल बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में जमकर बरसे। इस दौरान सर्वाधिक 84 मिलीमीटर बारिश जयपुर के सांभर में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। इसके आगामी 3-4 दिनों में राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी एक हफ्ते तक मॉनसून की गतिविधियां चरम पर रहने की संभावना है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस अवेलेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
1: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान काजरी ने बीते एक महीने में राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के 10,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। कृषि मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान के तहत काजरी ने 186 कार्यक्रम आयोजित कर समन्वित उर्वरकों, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कीट प्रबंधन पर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों से साझा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी एक हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से श्री गंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ हुआ। चूनावड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने भाग लिया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, वहीं ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। कार्यक्रम में लोगों को योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला परिवहन कार्यालय में इनवर्ड प्रणाली बंद कर दी गई है। अब वाहन सारथी पोर्टल से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आमजन खुद या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिले में जल संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पद्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और कम पानी में अधिक उत्पादन की आधुनिक विधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों और

0: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा बड़ी संख्या में चालान भी बनवाए गए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत काम शुरू किए जा रहे हैं। योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला परिषद के अनुसार इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण कर जिले का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट हासिल किए और उपयोगी रन भी बनाए। उनकी उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल रहा और उनके स्वागत के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कभी कभी घर घर चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाने तक सीमित माने जाने वाले डाक विभाग ने अब रोजगार और स्वरोजगार का नया जरिया शुरू किया है। इसके तहत श्रीगंगानगर मंडल की ओर से फ्रेंचाइजी योजना 2.0 युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए कमाई का नया अवसर बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत आम नागरिक डाक विभाग के साथ साझेदारी कर अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन करते हुए नियमित आय अर्जित कर सकेंगे। श्रीगंगानगर के डाक अधीक्षक अजय चुघ ने बताया कि फ्रेंचाइजी योजना 2.0 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं को स्वरोजगार का मंच भी उपलब्ध होगा और डाक विभाग रोजगार की नई उम्मीद भी घर घर तक पहुंचा सकेगा। बठिंडा श्रीगंगानगर रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। पहली बार इस रूट से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ गाड़ी संचालन शुरू होने पर यात्रियों में प्रसन्नता छा गई। इस ट्रेन का श्रीगंगानगर पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलने के बाद श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे के समय की बचत होगी, क्योंकि इससे बठिंडा में पावर बदलने का झंझट खत्म होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों की मांग और लगातार बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब तक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा रेल सेवा को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के सीमावर्ती इस जिले का दक्षिण भारत से रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा। इस निर्णय से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत में शिक्षा, रोजगार, व्यापार और चिकित्सा कार्यों के लिए जाने वाले यात्रियों को अब अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल, पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज फैला। अमरनाथ यात्रा सरूफी प्रधानमंत्री जात्रुआओं 5 संकल्प लेवन रियरच कीनी। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज भी, आवता 1 हफ्ता ताई चोखो में बरसबारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रा पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। वे बालोतराऊ विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावां रा कामां री शुरुआत करेला। माणा खबर नवीस बतायो के आमाय रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरा माय आवन जावन रासुबिताओं जुड़ी न्यारी न्यारी परियोजनावां शामिल है।
2: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के

0: नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इनो पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन करेला। 480 करोड़ रुपए रा खर्चो बनाई जो नुओ टर्मिनल भवन सालाना 20 लाख मुसाफिरां रे आवाजाही न ध्यान राखता था का डिजाइन करी चियो है। श्री मोदी जोधपुर माए संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत ही करेला। ई योजना रो मकसद देश माए हवाई जुड़ाव ने और बेहतर बनावनो है। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ बीच रेलां री पटरियां दोवड़ी बनावण री परियोजना सागे जोधपुर रिंग रोड रा दूजा हिस्सा माथे 4 लेन री सड़क बनावण रा काम री शुरुआत करेला। वह 1,000 मेगावाट बोतारी बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ई जनता ने सौंपेला। प्रधानमंत्री रा राज्य रा काल प्रस्तावित दौरा न ध्यान राखता था का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो पचपदरा रिफाइनरी रो दौरो कैरर काल फेवन वाला जलसारी तैयारियां रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनो पहले जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वह कहो के पचपदरा माए तेल साफ करण रा कारखाना हो प्रदेश रो विकास और तेज फैला।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ आइडिया और राजस्थान में कहीं लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा समेत न्यारा न्यारा आला अहलकार आज जोधपुर और बालोतरा रो दौरो कीनो। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री पहली 21 अप्रैल 2026 ने पचपदरा माए HPCL राजस्थान रिफाइनरी रो उद्घाटन करने वाला हा, पर उद्घाटन रा एक दिन पहली रिफाइनरी रा एक हिस्सा माए लाई लाग जावन रा कारण कार्यक्रम टाल दियो चियो हो। करीब 80,000 करोड़ रुपए रा खर्च उमनाई जिया तेल साफ करन रा ई कारखाना माए सालाना 9 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो जावेला। ओ तेल देश माए पूर्ति सागे दुनिया रा 40 देशा माए बेचो जावेला। ई कारखाना माए बनवा वाला दूजा छोटा मोटा उत्पादा माथे आधारित सहायक उद्योग लगावन सारू राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करी चियो है। इनु कारोबारी सीधा रिफाइनरियों कच्चो माल ले सकेला। तेल साफ करन रा ई कारखानाओं 1,35,000 बत्ता लोगों ने सीधा या परोक्ष रूप में काम धंधो मिलेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लाडला 12 साल माए देश सागे जोधपुर माए बुनियादी बरकत हुई है। वह श्री मोदी रा हाथ हूँ काल जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल न जनता ने सौंपण रा कार्यक्रम बाबत कहो कि इनो पूरा मारवाड़ और राज्य रा आतुणी हल्का रो हवाई संपर्क बधेला और हल्का रा विकास ने नुवी ऊंचाई मिलेला।
3: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सब के दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
1: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार ऐप रे जरिए आधार नंबर सागे मुफ्त ईमेल अपडेट रो सुबितो शुरू कीनो है। वो सुबितो 1 जुलाई 6 महीना सारू मुहैया कराई चियो है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रे मुजब नुओ सुबितो शुरू हेवन रा 2 दिन में आई 2 लाख बत्ता लोग ईमेल पतो अपडेट करती नो है। मंत्रालय रे मुजब आधार माए ईमेल जोड़ती बगत संबंधित ईमेल माथे जानकारी मिले है। इनु साफ कोई सागे हिफाजत रो एक और लेवल मिले है। संबंधित आधार नंबर वाला मारा आधार रो जी काम माए इस्तेमाल करियो चाहियो है मारी ठा कर सके है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। ई साल

0: अमरनाथ यात्रा आज शुरू होगी। पहलो जत्थो आज समारे पहलगांव और बालटाल रागेलाऊ पवित्र गुफा सारू रवाना भियो। यात्रुआं रा सुबिता सारू दोनों गेला माथे जरूरी व्यवस्थावां करीची है। सरकार यात्रुआं ने सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रे मुजब आप अपनी तय तिथि माथे ही सफर शुरू करण री राय दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ री यात्रा सारू जावण वाला ने शुभकामनावां दीनी है। यात्रुआं सारू लिख्योड़ा एक कागज माए प्रधानमंत्री हर साल वेवण वाली अमरनाथ यात्रा ने देश री आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एका माए एक शाश्वत अध्याय बताई। प्रधानमंत्री यात्रुआं अमरनाथ यात्रा रे दौरान साफ सफाई राखण, हिफाजती और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पूरी पालना करण, यात्रा खर्च रो कम कम 10% वोकल फॉर लोकल पहल रा तहत स्थानीय सामान री खरीदी माथे खर्च कर स्थानीय माली व्यवस्था ने बढ़ावो देवण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने बढ़ावो देवण सारू, राखी रे मौके भाई बहन ने एक पौधो उपहार रा तौरू देवण, ईमानदारियों कर्तव्यों री पालना कर और विकसित भारत बनावण माँ योगदान देर राष्ट्र प्रथम री भावना ने आगे बढ़ावण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री भरोसा जतायो के अमरनाथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक एका और सेवारा मूल्यां ने मजबूत करती रहवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकाओं लोकतांत्रिक परंपरावां ने मजबूत करण और हल्का सागे राज्य री उम्मीदारी नुमाइंदगी करण बाबत कहो है। वे आज कोलकाता माए पश्चिम बंगाल विधानसभा रा नुआ चुनी ज्या सदस्यों रा दो दिन रा आमुखीकरण कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री बिरला सदस्यों विधायी बहस सागे वाना समाधान माथे विचार करण सारू कहो। लोकसभा अध्यक्ष कहो के मौजूदा डिजिटल तकनीक रा दौर माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थावां माए बदलाव ला रहा है।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: प्रदेश माए काल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रा तेज न्यारी न्यारी सरकारी सेवावां सारू चुनी ज्या नौजवानां ने नौकरी लागण रा कागजात सौंप्या जावेला। जिला मुख्यालयां माथे राख्या जावण वाला कार्यक्रमां माए प्रभारी मंत्री और महकमा रा अहलकार नुआ कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागज देवेला। इस दौरान बालोतरा माए भेवण वाला प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रोई सीधो प्रसारण करियो जावेला। प्रदेश रा उत्तराध हल्का माए चौमासारी बिरखा शुरू की है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माए जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हड़ौती हल्का रा जिला माए जोरदार में बरसियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कहीं दौरान सबों 32-84 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिला रा सांभर माए दर्ज करी ची। श्री शर्मा बतायो का आवता एक हफ्ता ताई चौमासारी बिरखा चालती रहवन रा आसार है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
0: राज्य सरकार कर्मचारियां और अहलकारा रा तबादला माथे छूट री मियाद 10 जुलाई ताई बधा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ई बारा माए हुकम जारी करती ना है। आखिर माए खास समाचार एकर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम विकास री

0: 1,06,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नूवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कह्यो, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज भेला। अमरनाथ यात्रा शुरू भी, प्रधानमंत्री यात्रुओं 5 संकल्प लेवन री अरज कीनी। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज भी, आवता एक हफ्ता ताई चोखो में बरस बारा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बज चुके हैं। आइए अब सुने ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: पछि आपमा जका थारा फरमाइशी मेल है, संदेश जका है ब्याइडा है तो बे बंचांग सा। तो आपा शुरुआत कराएं भजन छू, लियो थे भी सुनो भजन तुलसाराम परिहार की आवाज गमा।
1: मेरे सतगुरु दी बगसीस, पल पल गुरु को वंदना मैं चरण निमावो सी।

बिल्कुल सर, थाने तुलछा राम परिहार की आवाज़ का मैं भजन सुने और आपने की फरमाइश के तौर पर आज आप शामिल करा वो संदेश वो लिखे है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। भजन की फरमाइश गुजरात गांधीग्राम से आपने की पुगी है प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर और कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली भी आपने की फरमाइश मंडी है। आप फरमाइश पुगिया वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से फरमाइश मंडी है। अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, परमिनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। फरमाइश आपने ती पुगती हुई है सुरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और अंगसागे है बब्बू और डब्बू। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान भी आपने ती फरमाइश मांडी है। और आप फरमाइश पुगी है अपनी हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और सहनाज। फरमाइश की बात करें तो आपने ती कवाई शालपुरा जिला बारा से आपने ती राज लिखी है सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से आपने ती लिखी है फरमाइश सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। आ फरमाइश पुग्गी है आपने ती डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डोली बेबी पूजा तामूरिया और अंगसागह है राधिका प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अल कबीर। जनकपुरी सहारनपुर से आपने ती फरमाइश मांडी है जॉन डेक्स्ट्रो, रोजी डेक्स्ट्रो, पर्ल डेक्स्ट्रो और विलिस डेक्स्ट्रो। आ फरमाइश पुग्गी है सा आपने ती लिखनला है भोपाल मध्य प्रदेश से और लिखी है मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव, आशा राधिका और सगड़ो परिवार।

नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से अपने ती महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी भी फरमाइश मान दी और आ फरमाइश पुग्गी है अपने ती दादरी गेट बिहानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। सांगली जिला के जत शहर से अपने ती फरमाइश मांडी है अल्ताफ हुजरे, सेफुल्ला सबाहत, कीर्त हुजरे और रेहान शेख। दतरंगी भट्टापारा से हीरामणि वर्मा, पार्श्वमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा भी फरमाइश मान दी और आ फरमाइश पुगी है गांव पिपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पुनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अगली फरमाइश बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी भी अपने दी फरमाइश मान दी सा। फरमाइश पुगी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आ फरमाइश पुगी है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश यदुव कड़वासरा, कुंदन जाखड़ और लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, किड़ूराम जोया। अंगसागर है हनुमान सारण और सुनील पाईवाल। अब थाने एक गीत सुना दें और जका फरमाइश करी है बापा बंचंगसा गीत गए बाद।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
1: बिल्कुल सर, थाने संदेश उपलना एक गीत सुनायो सुप्रिया और वीणा की आवाज गम्मा। आपने दी फरमाइश पुगी है संदेश के तौर पर रिंगणी छत्तीसगढ़ शू दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और चक 15 पीएस शू सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन, रोबिन सिंह जोसन। आप फरमाइश पुगी है आपने ते भोपालगढ़ राजस्थान शू धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार और छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र शू अनिल कुमार घोड़के, विशाल अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। फरमाइश पुगी है आपने ते ये गीतगी ही लिखी है ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP शू जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आप फरमाइश आपने ते पुगी है गांव अरायण शू डॉक्टर बनवारीलाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा और अंगसागह, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम चालिया। और आप फरमाइश आपने ती पुगती हुई है तहसील भादरा अनूप सैरसू, गजानंद सारस्वत, तारचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, शाहिल, उपेश कुमार, राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फुसाराम मील, महावीर लोहरा। और अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट शू आपने ती पुगती होगी सा सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की। और आप फरमाइश पुगी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब शू हरदेव मिक्का, बलविंदर विरक और जतेग विरक और मिक्का विरक। फरमाइश पुगी है सादुल से शू रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। और आ गांव फ्रांसी जिला हिसार शू राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी भी अपने ती फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है गांव घवंडिया शू जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति शिवम ढूकिया, सरिता सचिन, अमन्ना तमन्ना, सायना विष्णु ढूकिया और इवा धरणिया। अगली फरमाइश व्यास कॉलोनी बीकानेर शू डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही भी आपने ती फरमाइश मान दी। और आप फरमाइश पुगी है सनावत शू शेख मुशा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाणा। जिला किशनगंज बिहार शू आपने ती फरमाइश लिखर भेजी है रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। और आ फरमाइश आपने ती पुगती है गांव खोखरा वाली विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा और मेरठ कैंट शू दिग्दर्शन और कविता गोड़ भी आपने ती फरमाइश मान दी सा। बोड़सरा नेला छत्तीसगढ़ शू प्रमोद कुमार शाहू, बीमा वे भी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्यांशु शाहू, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत सिंह, जसदीप सिंह गौन 4M लिखे सा ना। आप फरमाइश पुगी है आपने ती ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब शाबी राही मेरा, जहाँ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार शू। और आप फरमाइश गांव ढाणी लाल खां शू जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां भी आपने ती फरमाइश मांडी सा। नई बस्ती गंज डुंडवाड़ा शू आपने ती फरमाइश लिखी है मोहम्मद यासिन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गांव होंडू जिला बलोत्रा शू उम्मेदाराम, नरेश कुमार, दिनेश कुमार भी फरमाइश मान दिशा। और आप फरमाइश पुगिया बठिंडा रोड मंडी डब्वाली शू राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। और बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका शू रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा भी आपने ती फरमाइश मान दी। और आप फरमाइश पुगी है अपने ते अमरगढ़ सादुल शेर शू कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान,

गुरनूर मान और कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान, राज सिंह प्रीत मान आ रल मिल के फरमाइश मंडी सा। अगली फरमाइश पुगिया बोला कलोनी गोरंडा जिला करनाल हरियाणा शू विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। और अंग सगे अपने ती फरमाइश पुगी है अगली मोताला महाराष्ट्र शू विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। आ फरमाइश पुगी है कस्बा गनौर यूपी शू फारूक अली खान, फेजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा और धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड शू निशार सलमानी, नुशार सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू भी फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है अपने ते लिखी है भूपेंद्र सुथार, मंजू सुथार, ध्रुव सुथार, चंद्रिका सुथार, संगरिया जिला हनुमानगढ़ शू गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब शू सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा, सरवण रेणुआ, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, करोड़ीवाल भी अपने ती फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है जिला नादेड़ अताला महाराष्ट्र शू शंकरलाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अर्णव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जयसवाल। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा शू अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी अपने ती फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है ऊपरकोट मोहला चौखुंटी बुलंदशहर शू मोहम्मद शहीद अबासी, निगत प्रवीण अबासी, सहनवाज अबासी, सरफराज अबासी, फरदीन अबासी, सुहाना अबासी, अरजान अबासी, अबान अबासी और सगलो परिवार। मारहरा दरवाजा एटा शू नवी हसन अबासी, नावेद हसन अबासी, सहनाज अबासी, सुहेल हसन अबासी, रशीद वारसी, अनम अबासी और यसब अबासी भी अपने दी फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है गांव पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश शू सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, अलौकिक चंसोलिया अंग सागे है। और आ फरमाइश अपने ती लिखर भेजी है गांव आ लिखियो है आपको निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा शू जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। 14 PSB शू अपने ती फरमाइश मंडी है और लिखे कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक और जमानिया गाजीपुर शू सुरेश जयसवाल, उर्मिला जयसवाल, दीपक जयसवाल और स्वाति जयसवाल भी फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है अपने सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, प्रण्य कुमारी प्रसिद्धि और प्रतिभा भाई गुंडाने, हीरामणि शेडे। और आ लिखियो है अपने ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती शू। आ फरमाइश पुगी है गांव हनुमन बनवाड़ा हनुमता फाजिलका पंजाब शू विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, रंग माता जी है, विद्या देवी और सगड़ो मायल परिवार। अब थाने एक गीत सुना दिया और पछड़ा आप फरमाइशड़ा नाम ज कहे वे बन चंगसा।

बिल्कुल सर, थाने फिल्मी गीत सुनाए और आपने दी फरमाइश पुगड़ी है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर सिंह सोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित और हेमंत मंडी गोलवाला सिंह बिरजलाल चौहान नीरज कुमार चौहान भी आपने दी फरमाइश मांड दी। आप फरमाइश पुगी है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश हूँ मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। आपने तई फरमाइश मांडी है पंचायत ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ चू बलकर्ण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा उमेश प्रमिला बंछोर। आप फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक सू सीताराम कांगड़ा बबीता बोथ निखिल कांगड़ा और तनवी बोथ भी फरमाइश मांडी है और आप फरमाइश आपने तई लिखर भिजी ऐसा गांव उमेवाला सू नौरंग सुथार विष्णु सुथार नीरज सुथार योगिता सुथार जय सुथार सुमन सुथार हरियाणा सू आपने तई फरमाइश मांड विजय अंकित कांगड़ा मोनी कांगड़ा प्रिंस बोध सीताराम कांगड़ा साहिल कांगड़ा और आप फरमाइश गांव 34 एसटीजी पीड़ीबुंगा सू बिशन लाल मेहरा अमन समीर और रितु मेहरा चैलकला पंजाब सू अमरजीत बंगा परविंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर अंबा चहल और आप फरमाइश सागी आपने ती पुगी है गोविंदगढ़ माझीवाड़ा श्री कर्णपुर सू राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जिनू मन्नू शिव सेठी कर्णपुरी पाल मिस्त्री कर्णपुरी और स्माइल टुटेजा पवन गुज्जर लखौली हेडसू मास्टर भंवर लाल कृष्णा सौरव विशाल राजबाला नव्या लक्षिता ममता मोहम्मद रफीक महावीर लोरा मुकड़ा राम भी फरमाइश मांड दी और आप फरमाइश पुगिया संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल सानी पिंगवाड़ा चौक गुरैया जलंधर सू और आप लिखर भेजी ऐसा फरमाइश लोकू कलोनी लुहारू हरियाणा सू बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चिंडालिया बरखा योगेंद्र चिंडालिया नरेंद्र कुमार निहारिका और आप फरमाइश आपने ती अमरपुरा जालू खाट सिंह लिखर भेजी है जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति मोनू प्रजापति।

राजेंद्र प्रजापति, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रदीप मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, केथल से डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, पद्मा टोकीज नेपानगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह भी आपने दी फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है चक 5 MD पत्रोड़ा तहसील अनूपगढ़ से। लिखने वाला है मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदू और अंगसागा है सुनील जनागल। दादा बाबू रोड ग्रिड झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिक्की शेखावत भी आपने दी फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, ओम बगड़िया और अंगसागा रजत और बेबी ग्रीमा बगड़िया। संबलपुर कांकेर से फग्गूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी फरमाइश मांडी ऐसा। और आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है 82 RB राइसनगर से। और लिखी है चेतनराम सारसवा, नौरंगराम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा, शिवप्रकाश खाती, सोहन जांगिड़, धनराज भांबू, सुनील डाल, प्रवीण सरावगी, नरसी सिंवर, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी आपने दी फरमाइश लिख दी। और मुकलावा से मदन बरोड़, मंजूबाला, प्रीति बरोड़, दिव्या बरोड़, हितेश बरोड़, कामना बरोड़, लुभानी बरोड़, आरती बरोड़, अजय पेंटर, मुकेश पेंटर, राजू पेंटर और अंग सगे है अंग माऊ बापू, हनुमान बरोड़, इमृति देवी। चक 3 RWM रावसर से आपने ती फरमाइश मांडी है मोहन लाल मोयल, गोपीराम मोयल, राकेश कुमार मोयल, मनीराम, अनुज, मनीष, अलका, मंजू कनिष्का, अर्चना रिया, दीपिका सोनाक्षी, हर्ष चिराग, मुकुंद, राधिका और रल मिल गए फरमाइश मांडी ऐसा। अगली फरमाइश पवन लिंबा, पृथ्वीराज लिंबा, शकुंतला देवी, अमरपुरा फाजिलका से अपने ती लिखर भेजी ऐसा फरमाइश। और चौटाला से अपने ती फरमाइश पुगी है दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। और अंगसागा है माणकसर से महेंद्र शेखावत और गुड्डू, पुनीत पचारिया भी अंगसागा ऐसा है ना। अगली फरमाइश की बात करना तो अपने ती दतरंगी से लिखी है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा। अब थाने सगला ने एक गीत सुना दिया सा, लो सुनो सा।

बिल्कुल सा थने गी सुनाई महबूब खान की आवाज़ गए वहाँ और बात करा पा फरमाइश आंगी तो आ फरमाइश पुगी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ से आपड़ा तीन दोबारा फाजिलका से मांडी है सर अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा गाँव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जी नागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया आ फरमाइश पुगी है गांव जोगीवाड़ा श्री गंगानगर से प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा और अंग सागे है मेंडी शर्मा सौरव शर्मा साइना शर्मा निवान शर्मा गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल प्रोहित मोनी पारिक भूपेंद्र पारिक छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल राजदीप राजेश भी अपने की फरमाइश मांडी है सर आ फरमाइश अपना गन पुगी है अगली मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा बिमला इंदौरा गेरी इंदौरा विकास इंदौरा रितु इंदौरा भविष्य खन्ना मिशेल खन्ना किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा अंग सागे अपने ती फरमाइश लिखर भेजी असा गांव बड़मुंजी जिला आगर से रघुनाथ मालवीय सुषमा मंजू बबीता ओम प्रकाश और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक और शोभा नायक और सगड़ो परिवार आ फरमाइश पुगी है रूपाणा बिश्नोइया सिरसा हरियाणा से सूरजमल मास्टर और पाल टेलर भीम टेलर और चिराग और दुर्गा शक्ति अब सुना दें थाने एक गीत सीमा मिश्रा की आवाज़ गामा लो सुनो सा

बिल्कुल सर, आपने तो ही फरमाइश ई गीत की ही पुगी ही सुरेंद्र जोशी, सोनम जोशी, आदित्य अमूल्य जोशी, कोला जिला हनुमानगढ़ छूँ, और इन सागे ही अनवी पुरोहित, वंशिका पुरोहित और चिरायु तनुष जनक माधवी जानवी आ रावसर छूँ, आपने ती फरमाइश लिखकर भेजिए सा। और फरमाइश पुगी है गांव भैलोल नगर छूँ, लिखने वाला है पटवारी राम बेनीवाल, राधा और संदीप। पर आज को कार्यक्रम किशोक लाग्यो वो थारा कागजा छूँ मेल छू पतो लाग सी सा, क्योंकि मारती जगह कागज है, मेल जगह है, संदेश जगह है, भी पूगा तो भी शुक्रिया है का आप आने वाला जगह कार्यक्रम है भी आप थरपांगा। पण आज को कार्यक्रम ही तो यही बात का सग है कि प्रीत बावली मालकां, कह प्रीत बावली मालकां लूठा इनरा काम, अरे कह पाला वो बावलो कह चिन हिवड़े राम। बिल्कुल सा, अब भाई रामेश्वर ने दो अज्ञा, राम राम शाह, राम राम। अब के थाने ले आ गया पीड़ो ओम चो।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनी काजल फिल्म का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कुदरत से, आवाज किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरू की और धुन राहुल देव बर्मन की।

श्रोताओं, कार्यक्रम क्या अगला गीत ही रांझा फिल्म से, और आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की। इस गीत को सुरों से सजाया है मदन मोहन ने और शब्द कैफी आज़मी की। श्रोताओं, ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

श्रोता भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। और दोस्तों आज की जो एक फिल्म लिए है हमने आपके लिए, जो आपको हम गीत आपको सुनवाएंगे, वो है फिल्म दिल एक मंदिर है। और आज इस फिल्म की जो हमने चयन किया है उसकी एक सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आज अभिनेता राजकुमार की जो बरसी है, उनका आज के दिन यानी 3 जुलाई को उनका देहांत हुआ था दोस्तों। और उनके इस आज के दिन को उनको याद करते हुए, यानी 3 जुलाई 1996 को जो उनका देहांत हुआ था, और आज के दिन उनको याद करते उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी एक फिल्म थी दिल एक मंदिर, जो 1963 में बनी थी। और इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था राजकुमार को। तो आइए कार्यक्रम बिना देरी करते शुरुआत करते हैं फिल्म दिल एक मंदिर के चंद गीतों के साथ और उसकी पटकथा के साथ। तो दोस्तों 1963 की सदाबहार और भावनाओं से भरपूर फिल्म दिल एक मंदिर की कहानी, ये केवल एक प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं बल्कि त्याग, कर्तव्य, मानवता और सच्चे प्रेम की ऐसी मिसाल है जो आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाती है। श्रोताओं कहानी की शुरुआत होती है कि डॉक्टर धर्मेश से, जो एक होनहार और आशर आदर्शवादी डॉक्टर होते हैं दोस्तों, और विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद वह अपनी प्रेमिका सीता से शादी का सपना देखते हैं, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर होता है। और जब धर्मेश वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सीता की शादी राम नाम के एक सज्जन और संपन्न व्यक्ति से हो चुकी है। राम की भूमिका इस फिल्म के लिए राजकुमार ने अभिनय किया था और सीता की भूमिका मीना कुमारी ने और डॉक्टर धर्मेश की भूमिका अदा की थी राजेंद्र कुमार ने। यह खबर धर्मेश के दिल तोड़ देती है और वह अपने निजी दुख को भूलकर अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। वह कैंसर अस्पताल में डॉक्टर बन जाते हैं और अपने पेशे को अपना धर्म मान लेते हैं। दूसरी ओर सीता यानी मीना कुमारी अपने पति राम यानी राजकुमार के साथ सुखी जीवन जी रही होती है, लेकिन अचानक राम की तबीयत बिगड़ने लगती है। जांच में पता चलता है कि उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। इलाज के लिए उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां मुख्य सर्जन डॉक्टर धर्मेश यानी राजेंद्र कुमार है। और दोस्तों अभी पटकथा हम आपको और भी सुनवाते हैं, मगर पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अस्पताल में वर्षों बाद धर्मेश और सीता यानी राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी आमने सामने आते हैं। दोनों के मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन दोनों अपने जज्बात छिपा लेते हैं। धर्मेश यानी राजेंद्र कुमार जानते हैं कि अब सीता यानी मीना कुमारी किसी और की पत्नी है और सीता भी अपने वैवाहिक जीवन के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जब सीता को पता चलता है कि उसके पति का ऑपरेशन धर्मेश करेंगे तो उनके मन में एक अजीब डर पैदा होता है। कई धर्मेश पुराने प्रेम की वजह से निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाए। आखिरकार वह साहस जुटाकर धर्मेश से बात करती है। धर्मेश उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहते हैं कि डॉक्टर का धर्म केवल मरीज की जान बचाना है, उनके लिए राम सिर्फ एक मरीज है। इसी बीच राम अनजाने में सीता और धर्मेश की बातचीत सुन लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों कभी एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन राम महान दिल वाले इंसान हैं। वह ना तो अपनी पत्नी पर शक करते हैं और ना ही धर्मेश पर नियत पर। उल्टा वह सीता से कहते हैं कि यदि वह इस बीमारी से बच ना सके तो वह धर्मेश के साथ नई जिंदगी शुरुआत करें।

श्रोताओं, राम की ये बात सुनकर सीता भावुक हो जाती है। वह अपने पति को समझाती है कि उसके लिए पति का स्थान सबसे ऊंचा है और उसका पूरा विश्वास केवल उनके साथ है। श्रोताओं, अब कहानी का सबसे कठिन मोड़ आता है। राम की जान बचाने का एकमात्र रास्ता बड़ा और जोखिम भरा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी धर्मेश पर होती है। उन्हें पता है कि यदि ऑपरेशन असफल हुआ तो लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने पुराने प्रेम के कारण जानबूझकर लापरवाही की। यदि सफल हुआ तो उनका डॉक्टर होने का धर्म जीत जाएगा। धर्मेश कई दिनों तक बिना आराम किए ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। वह हर रिपोर्ट, हर दवा और हर संभावना का गहराई से अध्ययन करते हैं। उनकी माँ भी देखती है कि बेटा लगातार काम करते करते खुद को भूल गया है। लेकिन धर्मेश का केवल एक ही लक्ष्य है कि राम की जान बचाना।

श्रोताओ, आखिर वह दिन आ जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सीता यानी मीना कुमारी बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू है और होठों पर भगवान से प्रार्थना। घंटों तक ऑपरेशन चलता है। आखिरकार ऑपरेशन पूरा होता है। धर्मेंद्र यानी राजेंद्र कुमार बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए सीता से कहते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा, राम जब सुरक्षित हैं। यह सुनते ही सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन उसी क्षण लगातार कई दिनों की थकान और मानसिक तनाव अपना असर दिखाते हैं। धर्मेश यानी राजेंद्र कुमार कुछ कदम चलते हैं और अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका हृदय जवाब दे चुका होता है। एक डॉक्टर जिसने अपने प्रेम से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा, अपने मरीज की जान बचाकर स्वयं इस दुनिया से विदा हो जाता है। और दोस्तों, फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। कुछ समय बाद राम और सीता धर्मेश की याद में बने हुए अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। वह धर्मेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उसकी माँ प्रतिमा का अनावरण करती है और सभी लोग उसे महान डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रोताओ, ये फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। डॉक्टर धर्मेश यानी राजेंद्र कुमार का बलिदान उन्हें अमर बना देता है। दोस्तों, दिल एक मंदिर केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसानियत, चिकित्सा धर्म और निस्वार्थ प्रेम की अमर गाथा है।

राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार के शानदार अभिनय ने इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। और दोस्तों, इस हम फिल्म की बात करते हैं तो दोस्तों, इस फिल्म की 11वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट स्पॉटिंग एक्टर का अवार्ड राजकुमार को मिला और इस फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड अर्जुन देव रशक को मिला। खैर दोस्तों, ये कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हैं। लीजिए, सुनिए इस फिल्म का अंतिम गीत।

श्रोताओ, इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक सदाबहार फिल्म की कहानी के साथ। अब अपने दोस्त जसवीर सिंह को दे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

जाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, और आज की फिल्म थी दिल एक मंदिर है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 14.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर, यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 हुए, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से और अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में यानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच का मुकाबला जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू और तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की हार के साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज रात 11:30 ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया। स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रिल एम्बोलो और डैन नडोय ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में ब्रिल एम्बोलो ने गोल करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त 2 कर दी। डैन नडोय ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोय का पहला गोल था। 2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका।
2: They should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now! The Swiss stride proudly on into the last 16 of the World Cup.
1: इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीते हैं। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया।
2: Cristiano Ronaldo, the World Cup journey continues.
1: वहीं स्पेन ने भी प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।
3: Correa, it's a well-timed run, it's 3. Austria put to sleep. And Mikel Oyarzabal says, I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
1: स्पेन की ओर से इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबल ने 2 गोल किए, जबकि पेड्रो पोरो ने अपने देश के लिए पहला गोल किया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद स्पेन की यह नॉकआउट मुकाबले में पहली जीत है। टीम का राउंड ऑफ 16 में सामना पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुक करते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय यानिक सिनर का मुकाबला जेनसन ब्रुक्सबी से और डैनियल मेदवेदेव का सामना जॉन लेनार्ड स्टफ से हो रहा है। नोवाक जोकोविच का मुकाबला आर्थर रिंडकनेक से जारी है। वहीं कल हुए मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रांस के वैलेंटीन रॉयर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं इस मुकाबले का हाल।
4: फ्रेंच ओपन

0: और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटियो बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो विर्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल चौथे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हुई है।
2: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके डेब्यू पर सभी की निगाहें हैं। घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं, विश्व कप और आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड सीरीज में मिली हार के बाद वैभव को अंतिम 11 में लिए जाने पर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के साथ पहले मुकाबले में भी वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में युवा स्टार को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। उधर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को विश्व कप जिताने वाले संजू सैमसन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। विश्व कप के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी सैमसन महज 1 ही रन बना सके। आयरलैंड श्रृंखला में सैमसन कुल 5 ही रन बना सके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 में 49 और 59 रन बनाकर अपना स्थान पुख्ता किया। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा को भी मध्य क्रम में तेज खेलना होगा। इस साल 12 T20 में तिलक सिर्फ 12 छक्के ही लगा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटोन जैसे बल्लेबाज श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश कर इस मुकाबले को जीतना चाहें। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भी 2 फाइनलिस्ट टीम का ऐलान हो गया है। उधर इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। कैनिंगटन ओवल में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: इंग्लैंड ने 5वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एमी जोन्स महज 2 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर आउट हुई। वहीं डेनी व्याट को 12 रनों के स्कोर पर मारिजाने कैप ने पवेलियन भेजा। एलिसा कैप्सी भी महज 1 रन ही बना सकी। 23 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान नेट साइवर ब्रंट और हीथर नाइट ने संभाला। दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए 90 गेंद में 133 रन जोड़े। नाइट ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। वहीं साइवर ब्रंट ने 75 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके दम पर इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की ओर से शबनम इस्माइल ने और नॉन कुलुलेको मलाबा ने 2-2 विकेट निकाले। इंग्लैंड ने 5वीं बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड से मिले 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। वोलवार्ट 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एनेरी डक्सेन ने महज 3 रन बनाए। वहीं टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई मारिजाने कैप भी सेमीफाइनल में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 5 रन बनाकर चार्ली डीन का शिकार बनी। सुने लोस 11 रन ही बना सके, जबकि क्लो ट्रायोन को 12 रन के स्कोर पर सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। नादिन डी क्लर्क ने 14 और अयाबोंगा खाका ने 4

0: रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि चार्ली डीन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: मुकाबले के दौरान इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टन ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को पछाड़कर सबसे ज्यादा 38 विकेट अपने नाम किए। बात निशानेबाजी पर, ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज पिछले 2 विश्व कप के प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष प्रतियोगिता में मजबूती से वापसी करना चाहेंगे। सुनते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
2: भारतीय निशानेबाजों ने लगातार राइफल और पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने इसी प्रदर्शन को निशानेबाज इस विश्व कप में भी दोहराना चाहेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए ये विश्व कप और इसके बाद इसी महीने चीन के हांगझोऊ में होने वाला ISSF विश्व कप एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के 2 बड़े मौके होंगे। भारतीय टीम को अपने विदेशी कोच ब्रिटेन के ओलंपिक डबल ट्रैप चैंपियन पीटर विल्सन के मार्गदर्शन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत की ओर से किनान चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। घरेलू ट्रायल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये तिकड़ी इस सत्र के दोनों विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही। पुरुष स्कीट स्पर्धा में भी निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ट्रैप स्पर्धा में नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत तथा स्कीट में परिनाज ढालीवाल, ओलंपियन रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान इस सत्र के विश्व कप मुकाबलों में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। महिला ट्रैप में आशिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोरक्को विश्व कप में 111 अंक के साथ 14वां स्थान रहा। नीरू अलमाटी विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रही। वहीं मनीषा 112 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रही। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने सफेद मोहरों का शानदार उपयोग करते हुए दिन के अंतिम गेम में नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनिश गिरी को मात दी। सुनते हैं करिश्मा की ये रिपोर्ट।
0: ईरान के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने अपने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 12 में से 10 अंक हासिल करके अपनी बढ़त 3 अंक तक पहुंचा दी है। जर्मनी के विंसेंट कीमर, फ्रांस के मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव, रोमानिया के डियग बोगदान डैनियल और गुकेश के समान 7 अंक हैं और वो संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। भारत के आर प्रज्ञान नंदा, गिरी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि के इवान सारिक और नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट सिर्फ 2-2 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में गिरी के खिलाफ मिले अवसरों का गुकेश ने भरपूर फायदा उठाया। प्रज्ञान नंदा के लिए दिन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्हें अलीरेजा के खिलाफ एक गलती भारी पड़ी और आखिर में वह हार गए। प्रज्ञान नंदा ने फॉरेस्ट के खिलाफ दिन का पहला गेम जीता था। दिन की शुरुआत में गुकेश ने बोगदान डेनियल के खिलाफ हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए फॉरेस्ट पर जीत हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात बैडमिंटन पर। तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की रिको गुंजी ने तानिया हेमनाथ को सीधे गेम में 21-11 से हराया। वहीं आकर्षि ने चौथी वरीयता प्राप्त अमरीका की बेवेन झांग को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें 20-22, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। उधर बास्केटबॉल में अहमदाबाद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को

0: दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

0: श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह। आइए सुने इन्हीं की आवाज़ में एक और गज़ल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज की कलाकार थी जगजीत सिंह। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुने पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू।

प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू लैके थोड़ा दोस्त जसवीर सिंह हाजिर है। तो अज दे इस प्रोग्राम दे अंदर आपां थोड़े नाल गलबात करांगे, थोड़े सुनेहे पढ़ांगे। तो अज जिहड़ी गल असी करना जा रहे हैं दोस्तों कि अज 3 जुलाई तो अज दिवंगत मोहन आलोक की जयंती ते थोड़ी सारिआं दी फरमाइश दे उत्ते राजेश चड्ढा जी नाल जिहड़ी गलबात है साडे कोल पहले रिकॉर्डिंग कीती हुई है वह असी जरूर सुनावांगे। तो आपां गलबात शुरू कर ली।

और उस तो पहला आपां एक छोटी जी कहानी, ज़्यादा समा नहीं लवांगे दोस्तों। आपां एक शब्द सुनिया कमाई, आपां इहदी गहराई च जाके कोई गलबात इहदी सोचिए भी कमाई शब्द जिहड़ा है उह अखीरी च उहदा अर्थ की निकलदा है। आपां अर्थ की गल कर लईए तो दोस्तों जिहड़ी कम आ गई उह कमाई है। कहिंदे दोस्तों कि चीन के अंदर सच्ची घटना दसदे आ जी, चीन के अंदर एक बीबी अपने बंदे नूं लेके होस्पिटल पहुँची तो इहदे हत्थ च बैग का भरया होया, नोटों का बैग का भरया होया उहदे हाथ च सी, ते उहने आवाज़ां मारियां अपने सारे जिहड़े डॉक्टर सी, नर्स सी, कंपाउंडर सी भी इह मेरा बंदा जिहड़े इहदे च ऑक्सीजन लैवल बहुत घटदा जा रहा, तुसीं इहनां नूं कोई ट्रीटमेंट दो ताकि इह अपना साह ले सके। दोस्तों जो डॉक्टर ने चैक किया देखा भी इह तां अखीरी साह दे उत्ते आ, ते उन्होंने उन बीबी ने जवाब दिता भी इह कम नहीं हो सकता, असीं इहनूं बचा नहीं सकते। खैर दोस्तों जिहड़ा होना सी अखीरी समय दे अंदर उह बंदा अपनी जिहड़ी साह पूरे कर चुकिया सी, कहिंदा पाओ मर गया। ते उह बीबी ने उस बैग दे विच्चों नोट कढ के ना होस्पिटल दे सारे बरांडे ते फैलाते, गिरा ते बिखेरते। दोस्तों जदों बिखेरे तो उहने एक गल कही और उच्चे आवाज कही कि यह बंदा यह नोटां नूं कमाण वास्ते सारी उम्र इहने लाती, मगर यह नोट इस बंदे दे चंद साह नहीं दवा सकिया। खैर दोस्तों गल उही कि कमाई शब्द वह है जिहड़ी कम आ जाए। और प्रोग्राम दे अंदर असी थोड़े सुनेहे पढ़ने वास्ते बिल्कुल तैयार हैं, गीत भी सुनावांगे, सुनेहे भी सुनावांगे। शुरू करते हैं तुहानूं वट्सअप सुनेहियां तो। ते पहला सुनेहा पहुंचिया जी मोताला महाराष्ट्र तो, विजय सुरलकर रतनमाला आरती गोरी ते ओम कुमार सुरलकर। ते आम सुनेहा पहुंचिया जी मध्य प्रदेश तो, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा। ते छत्तीसगढ़ तो हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोके लाल वर्मा। ते सुनेहा पहुंचिया जी कहिंदे जी मुहब्बत जिंदाबाद, बिल्कुल मुहब्बत जिंदाबाद है। ते इह जिहड़ा नारा कह लो, इह जिहड़ा सुनेहा कह लो, इह बहुत पुराना जी। राजेश चड्ढा जी साडे नाल जुड़े है जी, अज प्रोग्राम लाइव सुन रहे हो भी साडे नाल। उह दिता होया मुहब्बत जिंदाबाद, वास्तव च मुहब्बत जिंदाबाद है। तो सुनेहा पहुंचा जी सरबजीत जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्शपाल जोशन मेलबर्न तो, रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर तो। लिखते जी मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम पेश करता भाई जसवीर सिंह जी, साढ़े वालों प्यार भरी सलाम तो नमस्ते। बिल्कुल सलाम नमस्ते थोड़ी कबूल है जी। कहने जी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, वधिया लग रहा है, शुक्रिया जी प्रोग्राम सुनते रहो। आ महाराष्ट्र तो पहुंचे जी सुनेहा जी नवहानकर, पी एस, निर्मला, विशाल ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। ते अगला सुनेहा पहुंचा जी कमल साहनी पिंगा वाली चौक गुरैया जलंधर तो, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ ते भारत मक्कड़ दा सुनेहा पहुंचा जी। साढ़े कोल आदरणीय प्रसारक महोदय जसवीर सिंह जी, सत श्री अकाल, प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू हर शुक्रवार सुनते हैं तो हुण तां बहुत ही चंगा लगता है। शुक्रिया जी, थोनू प्रोग्राम चंगा लगता है। तो पिछले प्रोग्राम हैलो मिट्टी की खुशबू सुनिया तो बहुत चंगा लग्या, तो तुहाडी आवाज़ बहुत लाजवाब तो शानदार प्रस्तुति लई तुहानू बहुत बहुत धन्नवाद। तो सानू गीत जरूर सुनाओ, बिल्कुल गीत सुनावांगे दोस्तों, पर गलबात कर लीए, थोड़े सुनेहे पढ़ लीए। तो ये लिखण वाले सुनेहे जी पिंड खोखरा वाली तो विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी तो शगुन बारासा, मंडी केसी सिंहपुर तो श्यामला, राजपाल, संदीप कुमार, जयपाल, चिमन लाल। तो कहिंदे जी प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू सानू बहुत चंगा लगता है, तो पेशकारी बहुत लाजवाब, सानू कोई भी गीत सुनवा दो, बिल्कुल गीत सुनवा देंगे। पहला तो मंडी केसरी सिंह तो श्याम लाल जी, बहुत समय बाद थोड़ा इस सुनेहा पहुँचे, इन्हां अंतराल ना करया करो, टाइम नाल सुनेहा पहुँचा करो। तो थोड़ी मिसिंग या थोड़ी जिहड़ी उपस्थिति है साढ़े दिलों के अंदर चाह पैदा कर देती है। खैर तुसीं अगली बार सानू जरूर सुनेहा भेजोगे। आह सुनेहा पहुँचे जी पिंड हांडीखेड़ा जिला सिरसा तो राधेश्याम इंदिरा शर्मा का। मुरादाबाद तो पहुंचे जी सुनेहा मुकेश, कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहनी ते बलवीर सिंह दा सुनेहा पहुंच गया जी। वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा दा है सानू सुनेहा लिखे भेजा जी वट्सअप ते। गुजरात गांधी ग्राम तो प्रवीण सोनी, पूजा पायल ते जगदीश चोरी ने भी सानू सुनेहा पहुंचाया जी। आह सुनेहा लिखे भेजा जी केसरी सिंहपुर तो, राजकुमार ठटाई, कमल ठटाई, मगन लाल सोमानी, बिंदा, मुंशी राम महेंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल, तारा चंद तायमा। कहते किसी भी गीत सानू शामिल कर लो, बिल्कुल शामिल कर लिया जी। गीत भी सुनवा देने थोनू, कुछ सुनेहे पढ़ लिए। मिट्टी की खुशबू कार्यक्रम से सानू शामिल कर लियो जी। ये लिख के भेजिए जी लैन पिंड पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश तो, सतेंद्र कुमार चंसोलिया ते

मनीष श्रीवास्तव, शर्षिता लाली श्रीवास्तव ते आशा राधिका और श्रीवास्तव परिवार पूरा सूरतगढ़ तो, लेखराज जी पवन कुमार ते रवि सुरजीत कुंदन कहिंदे जी प्रोग्राम सुनदे बहुत वधिया लगदा जी, शुक्रिया जी। कहिंदे पर असीं सुनेहा पहली बार पा रहे हां, ते पवन महाराज पहली बार सुनेहा पा रहे, लेट जरूर हो गए तुसीं, पर जी आया नूं देर आए दुरुस्त आए, पर अगली बार तुसीं सुनेहा जरूर पाना है, ते असीं इंतजार करांगे तुहाडे सुनेहे दा। ते आ अहमदगढ़ मंडी पंजाब तों पहुँच गए मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया ते समा हीना, शकीला जैशमीन ते राजे सुल्तान अख्तर अंसारी, सूरज ते मोहम्मद जावेद अंसारी ने भी सानू सुनेहा वट्सअप ते लिख के भेजे। महाराष्ट्र तो शाहजी बखोड़े ते नंदा बखोड़े, हनुमान बखोड़े ते वकौड़ी तो उत्तम जमदाड़े ते स्वराज जमदाड़े ने भी लिख के भेजे जी। ते मामूलवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान ताइड़े, वसंतरा भोजने ते पी एस नुहानकर, ते पिंड हीरावाली फाजिलका पंजाब तो हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारिक ते भुपेंद्र पारिक ने भी सानू सुनेहा लिख के भेजे। आह पहुंचे जी सुनेहा साढ़े कोल महाराष्ट्र तो अनिल कुमार घोड़की, विशाली प्रजक्ता, वैष्णवी ते गायत्री ते यगेश। ते आह सुनेहा पहुंचे जी सालपुरा जिला बारा दा राजस्थान तो सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव का। ते गोवर्धन कॉलोनी तो पहुंचे जी सुनेहा सानू शहादरा दिल्ली तो, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतने मस्कीन, मेगा मस्कीन ते रचिता रिगान खुराना ने भी सानू सुनेहा भेजा है। महाराष्ट्र तो गंगा धर यमकर, प्रमोद यमकर, प्रदीप यमकर भी लिख के भेजते सुनेहा जी। ते गंज टुंडवारा तो शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। ते सहारनपुर तो जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पर डिकोस्ट्रा, विल्स डिकोस्ट्रा। ते आह सारे सुने पहुँचे से जी साढ़े कोल साढ़े साथियों के, जिन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किए सी। ते साढ़े साढ़े साथी ने हूँ आप कुछ एक जेडे खत सी ले लिए जी। आ पहला खत पहुँचे जी साढ़े साथियों का, तो कहते जी प्यार भरी सत श्री अकाल, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर तो लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हीना हर्षिता खुशी स्वामी। तो साथी साढ़े बहुत प्यार मुहब्बत करते। अगला खत पहुँचे साढ़े को पिंड ढाणी लाल खां, तहसील नौहर तो, हनुमानगढ़ राजस्थान तो मास्टर मुकेश सुथार। तो सारे श्रोतों प्यार भरी सत श्री अकाल, कहते जी थोड़ी जसवीर सिंह जी थोड़ी पेशकश बहुत वधिया हुंदी है, तो साढ़े होर जिहड़े परिवार के लोग ने जी वो कृष्णा बबीता रविंद्र महेंद्र ते अशोक ते गौरव ने, ते सानू गीत जरूर सुनवा जरूर सुनवाने। अगला खत पहुँचे जी गांधी चौक रोपड़ तो पंजाब तो, हरदेव मीका, बलविंदर बिरख, जयतक बिरख, मीका बिरख, श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगवंत सिंह नरेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। आ खत पहुँचे जी मंडी गोलूवाला, ब्रजलाल चौहान, नीरज चौहान का, कहते मिट्टी जी खुशी बहुत वधिया लगता प्रोग्राम। मसीता डब्बाली तो दर्शन लौट, सरगुण इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर, हनी लौट का भी साढ़े को खत पहुँचे। तो पटेल नगर मलोट तो रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आर जू जाजोरिया। आह खत पहुँचे जी मुखू फिरोजपुर तो, जिला बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, तो मुनीश बजाज का। तो मॉडर्न टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, जग्गी दुआ, तो जगमोहन राजपति। तो पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो पंजाब तो सत श्रीकाल लिख के भेज रहे जी मलकीत सिंह कुड़ियाणा, तो मनजीत कौर, तो बठिंडे तो दुपिंदर सिंह, तो गुरशब्द सिंह, तो इन्हें बराड़ परिवार पूरा ये खत लिख के भेज रहा जी। तो हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, तो जे एस नायक, शोभा नायक, तो इन्हों परिवार के होर लोग। तो कहते जी सूँ गीत जरूर सुनवा दे, बिल्कुल गीत सुनवा दें जी, गुरदास मान की आवाज़ भी थोड़ा गीत सुनवा देने। तो एक गल असं जरूर कहना चाहवागे दोस्तों, अज का यह प्रोग्राम जोड़ा थोड़े रेडियो सैट तक पहुँच रहे हैं, जोड़े साढ़े इंजीनियर साथी ने, साथी कंट्रोल रूम च ने जगदीश चंद्र, तो चेत राम जी, तो ट्रांसमीटर से साढ़े साथी ने मोहित अग्रवाल, रविंद्र कुमार पिप्पल। तो प्रोग्राम के अंदर आप गीत थोनों सुनवा देने, सुनते हैं गीत गुरदास मान की आवाज़।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू। मीटिंग वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हमराज फिल्म से ये गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर की।

दोस्तों, आज का ये फिल्म संगीत समर्पित है फिल्म अभिनेता राजकुमार को। और इनके बारे में हम बात करें तो दोस्तों, राजकुमार हिंदी सिनेमा के बहुत प्रभावशाली और रोबदार अभिनेता थे। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था और वे अपनी गहरी आवाज़, दमदार डायलॉग डिलीवरी और शाही अंदाज के लिए मशहूर थे। अगर हम इनकी बात करें जीवन की, तो उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था। फिल्मों से आने से पहले वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और उन्होंने 1952 में रंगीली से अभिनय शुरू किया था। बाद में मदर इंडिया, वक्त, काजल, हीर रांझा, पाकीजा और सौदागर जैसी फिल्मों से खास पहचान बनाई। राजकुमार को अक्सर डायलॉग किंग कहा जाता था, क्योंकि श्रोताओं, उनका बोलने का अंदाज बहुत अलग और यादगार था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि उनकी मौजूदगी की सीन को खास बना देती थी। और दोस्तों, आज के दिन यानी 3 जुलाई 1996 को उनका निधन हुआ। आज वे हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार अभिनेताओं गिने जाते हैं। हमारी श्रद्धांजलि राजकुमार अभिनेता जो उनको है, आप सभी को की तरफ से। और अब मैं बात करूं इस फिल्म संगीत की, समर्पित है राजकुमार को। इस फिल्म संगीत के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो पहला गीत हम राज फिल्म से सुनते हैं, ये गीत।

दोस्तों, बात अभिनेता राजकुमार की चल रही है तो हम राजकुमार की सबसे मशहूर फिल्मों की हम बात करें तो मदर मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, वक्त, हीर रांझा, पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा शामिल हैं। उनके जीवन से कुछ अनसुने किस्से भी बहुत दिलचस्प हैं। और दोस्तों, इन्होंने मशहूर फिल्में जो की रंगीली 1952 में की, जिनकी पहली फिल्म थी जिसकी कैरियर की शुरुआत हुई, और मदर इंडिया 1957, इस ऑस्कर नामांकित फिल्में ने उन्हें अपनी व्यापक पहचान दिलाई। दिल एक मंदिर 1963 में इस फिल्म के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला अवार्ड। वक्त 1965 में बहुचर्चित मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें उनका अभिनय बहुत याद किया गया। हीर रांझा 1970 में रोमांटिक ड्रामेटिक किरदार में उनकी मौजूदगी मजबूत दिखाई दी। पाकीज़ा 1972 में बनी, यह उनकी यादगार क्लासिकल फिल्मों में से गिनी जाती है। सौदागर 1991 में बनी, जो दिलीप कुमार के साथ 32 साल बाद उनकी जोड़ी फिर दिखी। और तिरंगा 1993 में बनी, जिनकी कैरियर की सफल और लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। खैर दोस्तों, ये तो कुछ फिल्में थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अब हम आपको उसी फिल्म से एक वक्त की फिल्म थी

शोधो, बात अभिनेता राजकुमार की चल रही है और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था और फिल्मों में आने के बाद वे राजकुमार के नाम से मशहूर हुए। वे अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी के लिए इतने मशहूर थे कि उन्हें डायलॉग किंग कहा जाने लगा। एक किस्से के मुताबिक एक पार्टी में सलमान खान ने उन्हें पहचान नहीं पाए तो राजकुमार ने अपना मशहूर अंदाज दिखाते हुए तीखा जवाब दिया। यह किस्सा उनकी बेबाकी के लिए बहुत चर्चा में रहा। और दोस्तों, एक बार गोविंदा से जुड़े एक मशहूर किस्सा यह भी है कि उन्होंने गोविंदा की दी हुई शर्ट को काटकर रुमाल बना दिया गया था और इसी मिजाज और अलग सोच का उदाहरण इसको माना जाता है। और दोस्तों, राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि खास एक व्यक्तित्व था। उनकी आवाज़, ठहराव, स्क्रीन पर रोब ऐसा था कि छोटे से छोटे सीन पर भी असर छोड़ जाते थे।

उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी संवाद शैली और व्यक्तित्व आज भी याद किए जाते हैं। उनका कैरियर बताता है कि वह सिर्फ हिट फिल्मों के अभिनेता नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के ऐसे सितारे थे जिनकी पहचान उनके अभिनय से भी ज़्यादा उनके व्यक्तित्व से बनी थी। और दोस्तों, उनकी फिल्मों के जो गीत थे वो बहुत ही उम्दा गीत थे जिसमें सभी सुनने वालों ने काफ़ी पसंद किया। एक गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नीलकमल से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत शायर लुधियानवी का, संगीत रवि का। सुनते हैं नीलकमल फिल्म से ये गीत।

श्रोताओ, राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी हिंदी सिनेमा के सबसे अलग और असरदार शैलियों में गिनी जाती है। उनकी गहरी आवाज, ठहराव और जानीश वाला शब्द अंदाज डायलॉग को सिर्फ बोलने से ऊपर लेकर और एक स्टाइल बना देता है। वे संवाद को बहुत नाटकीय नहीं बल्कि ठोस और शाही अंदाज में बोलते थे। उनका हर डायलॉग एक चेतावनी, चुनौती या आत्मविश्वास की तरह लगता था। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे और चिनाय सेठ जैसे संवाद आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता कि अगर किसी फिल्म का डायलॉग उन्हें पसंद नहीं आता था तो वे शूट के दौरान उसे बदल देते थे। उनकी डिलीवरी इतनी प्रभावी थी और प्रभावशाली थी कि कई लोग मानते थे कि उनके बोलने का तरीका ही सीन का आधा असर बना देता है। एक किस्से में उनके बेबाक स्वभाव का जिक्र मिलता है कि वे सामने वाले की हैसियत देखकर नहीं सीधे अपने अंदाज में बात करते हैं। और दोस्तों, उनके कुछ एक ऐसे जो डायलॉग्स है, जैसे जानी शब्द है, हम तुम्हें मारेंगे जरूर मारेंगे, सौदागर फिल्म से है, और चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं, ये वक्त फिल्म से उनका जो डायलॉग्स है याद किया जाता है। हम आंखों में सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते, तिरंगा फिल्म से ये जो डायलॉग है, और हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं, बेताज बादशाह से ये डायलॉग्स है जो हम आज भी उनको याद करते हैं। राजकुमार ने डायलॉग डिलीवरी को अभिनय एक अलग पहचान दी है उनकी आवाज़ और अंदाज के कारण। छोटे से छोटा संवाद भी यादगार बन जाता है। और दोस्तों, इसी बात पे हम इस कार्यक्रम का गीत सुनते हैं, हीर राजा फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की, गीत कैफी आज़मी का, संगीत मदन मोहन का।

दोस्तों, आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने अपने दोस्त जसवीर सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में हिंदी में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस

0: वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: beat Daniel Medvedev. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चलाना 900 किलो हर्ट्स पर, एफएम 14.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप ट्यूज ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की रात्रिकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन सभा प्रातः 5:55 पर आरंभ होगी। तब तक हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।